गीगाहर्ट्ज़ पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तोहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्ट श्रोताओ तोहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन देन कार्यक्रम दा अगला गीत।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: धरती हमारी माँ है, लेकिन आज वो घायल हो रही है। हर दिन कटते पेड़, सूखती नदियाँ और बढ़ता प्रदूषण हमें चेतावनी दे रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियाँ सांस लेने के लिए भी तरस जाएंगी। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाएं, क्योंकि साफ हवा, मीठा पानी और हरियाली ही असली धन है। पर्यावरण बचाना मतलब जीवन बचाना।
1: बंटी, बंटी,
2: बंटी,
1: बंटी, बंटी, बंटी, क्या हो गया तुम्हें? ये रोज रोज क्या?
3: अब आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो मुझे बहुत डर लगता है।
1: सॉरी बंटी, अब से पापा हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। प्रॉमिस।
3: गॉड प्रॉमिस।
1: गॉड प्रॉमिस।
4: सीट बेल्ट ना पहनने से नुकसान आपसे ज्यादा आपके अपनों का हो सकता है, तो गाड़ी में बैठते ही खुद से और सबसे पूछें, पहनी क्या?
5: क्या आपके पार्षद ने साल में दो बार वार्ड सभा का आयोजन किया है?
6: वार्ड सभा, आपका वार्ड, आपकी आवाज।
5: नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुना था ताकि वे उनके निर्देशों के अनुसार काम करें, लेकिन अफसोस रुचिका, ये सेवक से मालिक बन बैठे।
6: क्या आपके पार्षद ने पिछले कार्यकाल में नियमित वार्ड सभा की?
5: क्या उन्होंने आपकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुना?
6: क्या उन्होंने चुनाव के समय किए गए वादे पूरे किए?
5: क्या वह एक सेवक की तरह काम करते हैं या एक शासक की तरह?
6: सावधान, अगर वार्ड सभाओं की उपेक्षा की गई है तो समझ लीजिए कि उन सेवकों ने नागरिकों की आवाज और उनकी पसंद को कुचल दिया है।
5: आपका एक वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके वार्ड और धर्मशाला नगर का भविष्य है।
6: अपना अधिकार पहचानो,
5: सही प्रतिनिधि चुनो,
6: सेवक चुने, मालिक नहीं। न भूलेंगे आवाज अपनी, न भूलेंगे अधिकार। आपका वार्ड, आपकी जिम्मेदारी।
7: कहते हैं लड़कियां दिमाग से नहीं दिल से काम लेती हैं। हंसी तो फंसी, और इनकी ना में भी हाँ होती है। हे,
8: मेरी ना का मतलब सिर्फ ना है, जस्ट फ्रेंड्स।
9: ना कहना आसान नहीं पर जरूरी है। HIV एड्स का चांस ना लें।
8: जवान हूँ, नादान नहीं।
1: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
10: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
1: बात तो सही है।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

0: 91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

FM पर यह है आप सभी का अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 FM पर आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

अवसर भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण, GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: बंटी बंटी
1: बंटी
0: बंटी बंटी बंटी, क्या हो गया तुम्हें? ये रोज रोज क्या?
2: बाबा आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो मुझे बहुत डर लगता है।
3: सॉरी बंटी, अब से पापा हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, प्रॉमिस।
2: गॉड प्रॉमिस।
4: सीट बेल्ट ना पहनने से नुकसान आपसे ज्यादा आपके अपनों का हो सकता है, तो गाड़ी में बैठते ही खुद से और सबसे पूछें, पहनी क्या?
5: क्या आपके पार्षद ने साल में दो बार वार्ड सभा का आयोजन किया है?
6: वार्ड सभा, आपका वार्ड, आपकी आवाज।
5: नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुना था ताकि वे उनके निर्देशों के अनुसार काम करें, लेकिन अफसोस रुचिका, ये सेवक से मालिक बन बैठे।
6: क्या आपके पार्षद ने पिछले कार्यकाल में नियमित वार्ड सभा की?
5: क्या उन्होंने आपकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुना?
6: क्या उन्होंने चुनाव के समय किए गए वादे पूरे किए?
5: क्या वह एक सेवक की तरह काम करते हैं या एक शासक की तरह?
6: सावधान, अगर वार्ड सभाओं की उपेक्षा की गई है तो समझ लीजिए कि उन सेवकों ने नागरिकों की आवाज और उनकी पसंद को कुचल दिया है।
5: आपका एक वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके वार्ड और धर्मशाला नगर का भविष्य है।
6: अपना अधिकार पहचानो,
5: सही प्रतिनिधि चुनो,
6: सेवक चुने, मालिक नहीं। न भूलेंगे आवाज अपनी, न भूलेंगे अधिकार। आपका वार्ड, आपकी जिम्मेदारी।
7: कहते हैं लड़कियां दिमाग से नहीं, दिल से काम लेती हैं। हंसी तो फंसी, और इनकी ना में भी हाँ होती है। हे,
8: मेरी ना का मतलब सिर्फ ना है, जस्ट फ्रेंड्स।
9: ना कहना आसान नहीं पर जरूरी है। HIV एड्स का चांस ना लें। जवान हूँ, नादान नहीं।
10: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
11: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
10: बात तो सही है।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। सुबह के 9 बज गए हैं और श्रोताओं आप सभी को इंतजार रहता है इस समय कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का। तो कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर आपकी रेडियो दोस्त सुषमा हाजिर हो गई है। श्रोताओं आप सभी को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और सुबह हो गई है और आप लोग भी अपने अपने काम पर लग गए होंगे। साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ जुड़ चुके होंगे आप सभी, क्योंकि आप सभी को पता है इस कार्यक्रम का समय रहता है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। तो श्रोताओं आज के ये 2 घंटे जो हैं वो हम रोज़ाना की तरह आपके साथ बातचीत करेंगे और साथ ही आपका मनोरंजन करवाएंगे प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत पहले कर लेते हैं एक बहुत ही विचार योग्य विचार के साथ। जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है वो शिकायत करने में नहीं, क्योंकि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। बिल्कुल श्रोताओं ये विचार हमें बहुत कुछ समझाता है, सिखाता है और इसी विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी है। और आज क्या बात आपके साथ करने वाले हैं उस पर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। तो चलिए श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला प्यारा सा गीत आप सभी अपने अपने रेडियो सेट पर।

0: जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म का गीत श्रोताओं अभी आपने सुना लता मंगेशकर और कुमार शानू की आवाज़ों में। इस गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी है और ऐसे ही प्यारे प्यारे गीतों के साथ आपको जुड़े रखेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। श्रोताओं आपको बता दें कि आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। और श्रोताओं कार्यक्रम में आपको हम रोज़ाना देते हैं मौसम की जानकारी और ऐसा ना हो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए अब हम चलते हैं कार्यक्रम में बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर। और आपको बता दें कि आज बहुत तेज़ धूप खिली हुई है, गर्मी का एहसास सुबह से ही हो रहा है। श्रोताओं तो धर्मशाला की अगर हम बात करें तो आज का अधिकतम तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस और हवा में नमी है 49%। तो मौसम आज खिला खिला रहेगा और मौसम में आज गर्मी भी रहेगी, तो अपना ख्याल रखिए ऐसे मौसम में। साथ ही श्रोताओं मौसम की जानकारी के साथ साथ हम चलेंगे जानेंगे मौसम विभाग क्या कहता है मौसम के बारे में। श्रोताओं मौसम विभाग का कहना है कि 16 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के कुछ हिस्सों में अंधड़ गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। इन क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 17 मई की बात करें तो 17 मई को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है और 18 मई से प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहने के आसार हैं। साथ ही विभाग के अनुसार 18 से 21 मई तक बारिश की संभावना कम है और लगातार धूप खिलने से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये तो थी मौसम की जानकारी और इस मौसम की जानकारी के बाद हम चलते हैं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम भी सुनते हैं साथ ही अपने प्यारे श्रोताओं को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत जिसे हम लेकर आए हैं रखवाला फिल्म से। आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।
1: अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल

91.2 MHz पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। सुबह का ही समय है और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अभी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, मौसम की बात हमने की और मौसम की बात के साथ साथ हम यही कहेंगे कि मौसम जो है वो दिन प्रतिदिन अपना रंग बदल रहा है। कभी ये बारिश कर रहा है, कभी ये तूफान ला रहा है और कभी ये बहुत तेज धूप ला रहा है। तो ऐसे में श्रोताओं, अपने आप का ख़ास ख्याल हमें रखना पड़ेगा क्योंकि बदलता मौसम बहुत सारे विकार और बहुत सारी परेशानियाँ हमें देता है। तो अपना ख्याल रखिए। और श्रोताओं, इस समय कार्यक्रम में अब कुछ ही समय के बाद समय हो जाएगा समाचारों का। तो समाचारों से पहले चलते हैं, लेते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत, आरोप। इस फिल्म का गीत अब आप सुनने वाले हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

0: अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए कल होगा मतदान। कुल 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार ने पूरी की अपनी सभी चुनावी गारंटियां। चुनावों में कांग्रेस की जीत का किया दावा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते चुनावों में सबक सिखाने को जनता तैयार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी से देश की पवित्र वैदिक संस्कृति से जुड़ने का किया आह्वान। और लाहौल स्पीति जिला के लोगों को अब बर्फबारी, भूस्खलन और सड़क बंद होने की स्थिति में ड्रोन से मिलेंगी दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कुल 439 पदों के लिए होने वाले इन चुनावों में 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 4 नगर निगम सहित 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में ये मतदान होगा। इन चुनावों में कुल 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,808 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। नगर पंचायत व नगर परिषदों में मतों की गणना कल मतदान के बाद होगी, जबकि नगर निगम चुनाव के लिए पड़ने वाले वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 5 गुटों में बंटी भाजपा इन चुनावों में जीत के झूठे सपने देख रही है। सोलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा पूरी तरह से आपसी लड़ाई और अंदरूनी खींचतान के दौर से गुजर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने अपनी सभी चुनावी गारंटियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम सहित शहरी निकायों के चुनाव में कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिल रहा है और निश्चित तौर पर इन चुनावों पर कांग्रेस की जीत होगी। इस बीच मुख्यमंत्री आज दिल्ली रवाना होंगे। वे कल दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाएंगे। उनका 18 मई को केरलम के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने का कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों और झूठी गारंटियों से प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लोगों ने कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना लिया है। मंडी में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने प्रदेश की 4 नगर निगमों में भाजपा की जीत का दावा किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर निगम चुनाव महज स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि प्रदेश में कांग्रेस की विदाई की पटकथा लिखने वाले साबित होंगे।
1: मैं सभी जगह जाकर के आया हूं। मैं पालमपुर भी जाके आया, धर्मशाला भी जाकर के आया हूं और उसके साथ साथ में मैं सोलन भी जाकर के आया हूं। सभी जगह इस तरह का वातावरण है। प्रदेश की सरकार के खिलाफ इतना भयंकर गुस्सा लोगों के मन में है, लोग सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और परिणाम जब निकलेगा आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 4 कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की निगम बनेगी।
0: प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए प्रत्याशियों को कल चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। प्रदेश में इस बार 3 चरणों में ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक पद के लिए अलग अलग रंग के लगभग 60,00,000 मतपत्र छपवाए गए हैं। हर पद के लिए अलग अलग रंग निर्धारित किया गया है। पंचायत सदस्य के लिए सफेद रंग, उप प्रधान पद के लिए पीला, प्रधान पद के लिए हल्का हरा रंग, पंचायत समिति उम्मीदवार के लिए गुलाबी और जिला परिषद उम्मीदवार के लिए हल्का नीले रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव परिणाम मतदान वाले दिन ही घोषित किए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के वोटों की गिनती 31 मई को होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित नगर निकायों के चुनावों में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत हासिल कर क्षेत्र के विकास में राज्य सरकार की नीतियों व निर्णयों को जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि चुनावी गारंटियों के दम पर सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस सरकार के लिए अब यही गारंटियां मुसीबत साबित हो रही है। शिमला जिला के ठियोग में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान निधि से लेकर रोजगार के वादों तक सभी गारंटियों का परिणाम धरातल पर शून्य है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी से देश की पवित्र वैदिक संस्कृति से जुड़ने का आह्वान किया है। बेंगलुरु में वेद आगम संस्कृत महापाठशाला में विद्यार्थियों व विद्वानों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान देश की सनातन सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपरा के जीवंत प्रतीक हैं। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे गुरुकुल हमारी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की पुनः परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी और CBI इस मामले की जांच कर रही है। NTA ने बताया कि उम्मीदवार 21 मई तक अपनी पसंद के अनुसार अपना वर्तमान पता व पहले और दूसरे परीक्षा के शहर का चयन अपडेट कर सकते हैं। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोगों को बर्फबारी, भूस्खलन और सड़क बंद होने की स्थिति में ड्रोन के माध्यम से दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री मिल पाएंगी। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता के अनुसार DDMA ने खोज व बचाव कार्यों के लिए अत्याधुनिक रेस्क्यू ड्रोन खरीदा है।
2: दुर्गम जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में अब आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को आधुनिक तकनीक का मजबूत सहारा मिल गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने खोज और बचाव कार्यों के लिए एक अत्याधुनिक रेस्क्यू ड्रोन खरीदा है। इस हाईटेक ड्रोन का सफल प्रशिक्षण श्रृंखला दर्रा में लगभग 16,580 फीट की ऊंचाई पर किया गया, जहां इसने राहत सामग्री पहुंचाने की क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया। ये ड्रोन करीब 30 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है और 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। ड्रोन में डे नाइट कैमरा, 10x ज़ूम, ऑटोमेटिक रिटर्न सिस्टम और तेज हवाओं में भी काम करने जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि बर्फबारी, भूस्खलन और सड़क बंद होने जैसी स्थितियों में ये ड्रोन दूरस्थ इलाकों तक दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री तेजी से पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय का राष्ट्रीय न्यास अधिनियम एक मजबूत कानूनी व कल्याणकारी निकाय साबित हो रहा है। ऊना जिला में राष्ट्रीय न्यास द्वारा पंजीकृत संगठनों के माध्यम से बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
3: राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए ऊना जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्थानीय समिति के माध्यम से बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले जिन दिव्यांगजनों को पारिवारिक संरक्षण उपलब्ध नहीं है, उन पात्र व्यक्तियों के लिए स्थायी अथवा सीमित अवधि के विधिक संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं। ऊना जिला में अब तक 113 स्थायी और 6 सीमित कानूनी संरक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। ऐसे दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सामाजिक समावेश हेतु जिला स्तरीय स्थानीय समिति सामाजिक स्वयंसेवी संस्था आश्रय की मदद से पात्र व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण और कौशल विकास के माध्यम से भी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द हैं, 2 लाख व्यावसायिक उपभोक्ताओं को झटका, 1 रुपये यूनिट महंगी हुई बिजली। दैनिक जागरण ने लिखा है, हिमाचल में व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगी महंगी बिजली। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, पुलिस कर्मियों पर केस चलाने से पहले लेनी होगी सरकार की मंजूरी। हिमाचल दस्तक के अनुसार, प्रदेश में शहरी निकायों के लिए चुनावी शोर थमा, अब डोर टू डोर प्रचार शुरू। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, बारालाचा शिंकुला दर्रा खुलने के बाद बर्फबारी देखने उमड़े पर्यटक, आज बारिश का येलो अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए कल होगा मतदान, कुल 1,147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार ने पूरी की अपनी सभी चुनावी गारंटियां, चुनावों में कांग्रेस की जीत का किया दावा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते चुनावों में सबक सिखाने को जनता तैयार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी से देश की पवित्र वैदिक संस्कृति से जोड़ने का किया आह्वान और लाहौल स्पीति जिला के लोगों को अब बर्फबारी, भूस्खलन और सड़क बंद होने की स्थिति में ड्रोन से मिलेंगी दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। आपका वोट, आपका शहर, आपका भविष्य।
1: क्या आप जानते हैं कि धर्मशाला के विकास में आपकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना कानूनन अनिवार्य है? नगर निगम के नियमों के अनुसार
0: वर्ष में 2 बार वार्ड सभा आयोजित करना अनिवार्य है। ये एक ऐसा लोकतांत्रिक मंच है जहां आप अपने वार्ड की समस्याओं और मुद्दों को सीधा उठा सकते हैं।
1: आपके सुझावों को ही वार्ड विकास योजना और नगर निगम विकास योजना का आधार बनाया जाता है।
0: वार्ड सभा का आयोजन ना करना नागरिकों को विकास की मुख्य धारा से बाहर रखने के समान है।
1: जब आप वार्ड सभा में आते हैं तो आप केवल शिकायत नहीं करते बल्कि समाधान का हिस्सा बनते हैं।
0: भागीदारी आपकी, विकास हमारा उद्देश्य। अपनी समस्याओं को योजना का हिस्सा बनवाएं, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करें।
2: आइए मिलकर बनाएं एक बेहतर और विकसित धर्मशाला।
1: जागरूक बने और अपने हक के लिए आगे आए।
3: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। समाचारों के बाद और इस छोटे से अंतराल के बाद सभी श्रोताओं को एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि सभी श्रोता इस कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे। और श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत हम करेंगे। आज क्या बातचीत होने वाली है उस पर बात करेंगे ज़रूर, लेकिन पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम में ये प्यारा सा गीत। रंग फिल्म का ये गीत अब आप सुनने वाले हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और ऐसे ही गीत श्रोताओं आज आप कार्यक्रम में सुनने वाले हैं, और साथ ही श्रोताओं जानकारियां भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, क्योंकि आप तक पहुंचानी है बहुत ज़रूरी जानकारियां। पर फिलहाल के लिए हम आज बात करेंगे 16 मई की, यानी कि 16 मई का दिन जो है वो इतिहास के पन्नों में किस लिए दर्ज हुआ, कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी बातें हुई हैं, उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रोताओं, भारत में इतिहास में 16 मई ने क्या किया, क्या किस लिए वो दर्ज हुआ। तो 1975 में चलेंगे। 1975 में सिक्किम औपचारिक रूप से भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। साथ ही 1996 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ आज के दिन ली थी। साथ ही 1739 में बसाई का युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें मराठों ने पुर्तगाली सेना को हराया था। श्रोताओं, दुनिया में इतिहास में 16 मई का दिन किस तरह से रहा, इस पर भी हम नज़र डालेंगे, लेकिन फिर से पहले सुनेंगे कार्यक्रम में ये प्यारा सा गीत। तो लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम में आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे इतिहास की। 16 मई के इतिहास में, दुनिया के इतिहास पर अब हम नज़र डालेंगे। 1929 की श्रोताओं बात करेंगे, हॉलीवुड के रूज़वेल्ट होटल में पहली बार अकादमी पुरस्कार, जिसे कि ऑस्कर भी कहा जाता है, प्रदान किए गए। 1960 में भौतिक विज्ञानी थियोडोर मैमन ने कैलिफोर्निया में दुनिया के पहले सक्रिय लेज़र का सफल प्रदर्शन किया। इसके साथ 1966 में आज ही के दिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 मई की अधिसूचना जारी की, जिसने कुख्यात सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। श्रोताओं, 1975 की बात करें तो आज ही के दिन जापान की जुनको ताबेइन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला बनी। तो ये तो थी इतिहास की कुछ घटनाएं जो हमने आपके साथ की साझा, और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ेंगे, हम आपके साथ करेंगे और भी बातचीत, साथ ही आप तक पहुंचानी है जानकारियां। तो जानकारियों से पहले फिर से चलते हैं, सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत। श्रोताओं, आपको बता दें, आपने अभी जो गीत सुना था वो रेस फिल्म से लिया गया था और आवाज़ थी आतिफ असलम की। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला प्यारा सा गीत, मिस्टर आशिक फिल्म से, कुमार शानू और अलका याग्निक की प्यारी आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में हम आपके साथ बातचीत करते हैं, साथ ही आपका मनोरंजन करवाते हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ, और साथ ही श्रोताओं आप तक पहुँचाई जाती हैं जानकारियाँ। तो चलते हैं, जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान दिवस 17 मई 2026 यानी कि रविवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश संबंधित नगर निगम क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, वार्डों, निगमों, शिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, इसके साथ ही दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों पर लागू रहेगा। साथ ही श्रोताओं आपको बता दें कि अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा विनय कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिला कांगड़ा के अंतर्गत नगर निगम धर्मशाला, नगर निगम पालमपुर, नगर निगम कांगड़ा, नगर परिषद नूरपुर, नगर परिषद नगरोटा बगवान, नगर परिषद देहरा, नगर परिषद ज्वालामुखी तथा नगर पंचायत शाहपुर में चुनाव प्रस्तावित हैं। अधिसूचना के अनुसार इन क्षेत्रों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे कर्मचारी जो राज्य के अन्य स्थानों पर कार्यरत हैं लेकिन संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में मतदाता हैं, उन्हें मतदान करने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को भी निर्देश दिए हैं कि वे कर्मचारियों को मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश सुनिश्चित करें ताकि सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। तो श्रोताओं ज़रूर मतदान करें और आपको इस चीज़ के लिए जो है वो वेतन भी दिया जाएगा, छुट्टी भी दी जाएगी। वैसे तो रविवार है, छुट्टी का दिन रहता है, लेकिन कुछ जो औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है जहाँ पर कि संडे को भी काम किया जाता है तो वहाँ रहेगी मतदान के लिए छुट्टी। ये थी जानकारी, और इस जानकारी के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत। श्रोताओं, बहुत सारे हमारे श्रोता, नियमित श्रोता रहते हैं जो कई बार हमें मिल जाते हैं या कई बार उनसे मुलाकात हो जाती है, तो वो भी कई बार अपने फरमाइशी गीत हमें बताते हैं। तो ये जो गीत है अब आप सुनने वाले हैं, ये गीत हमें अनु द्वारा भेजा गया है जिन्होंने फरमाइश की थी इस गीत की। तो अनु के लिए और सभी के लिए ये गीत रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है, मैंने प्यार किया। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अब आप सुनने वाले हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और कार्यक्रम में अभी आपने सुना मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, आप सभी ने ये मूवी देखी होगी और अपने समय की ये बहुत ही मशहूर मूवी मानी जाती थी। और इस फिल्म में सलमान खान ने बहुत अच्छा रोल किया था और बहुत यंग एज में उनकी ये फिल्म थी और बहुत सारे लोगों को ये पसंद थी। उस टाइम सिनेमा हॉल जो थे वो नए नए खुले थे और स्पेशली लोगों ने टिकट लेकर इस फिल्म को थिएटर में देखा था। तो श्रोताओं, इस फिल्म के गीत के बाद अब समय हो गया है एक छोटे से अंतराल का। तो इस छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से जुड़ेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। आपका वोट, आपका शहर, आपका भविष्य।
1: क्या आप जानते हैं कि धर्मशाला के विकास में आपकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना कानूनन अनिवार्य है? नगर निगम के नियमों के अनुसार
0: वर्ष में 2 बार वार्ड सभा आयोजित करना अनिवार्य है। ये एक ऐसा लोकतांत्रिक मंच है जहां आप अपने वार्ड की समस्याओं और मुद्दों को सीधा उठा सकते हैं।
1: आपके सुझावों को ही वार्ड विकास योजना और नगर निगम विकास योजना का आधार बनाया जाता है।
0: वार्ड सभा का आयोजन ना करना नागरिकों को विकास की मुख्य धारा से बाहर रखने के समान है।
1: जब आप वार्ड सभा में आते हैं तो आप केवल शिकायत नहीं करते बल्कि इस समाधान का हिस्सा बनते हैं।
0: भागीदारी आपकी, विकास हमारा उद्देश्य। अपनी समस्याओं को योजना का हिस्सा बनवाएं, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करें।
2: आइए मिलकर बनाएं एक बेहतर और विकसित धर्मशाला।
1: जागरूक बने और अपने हक के लिए आगे आए।
3: बिल्कुल श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ आप फिर से जुड़ चुके हैं और इस छोटे से अंतराल के बाद जैसे कि हमने वादा किया था कि फिर से जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में और आपसे करेंगे बातचीत। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोता जो हैं वो इस कार्यक्रम के साथ ज़रूर जुड़े होंगे। श्रोताओं, आज एक ख़ास बात आपके साथ करने वाले हैं क्योंकि आप सभी को पता है आप अब चुनावी दौर जो है वो शुरू हो ही चुका है। तो श्रोताओं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी चुनाव केवल नेताओं को चुनने का अवसर नहीं बल्कि अपने भविष्य को तय करने का भी समय होता है। हमारा एक वोट सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और देश की दिशा तय कर सकता है। इसलिए वोट देना सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। चुनाव के समय श्रोताओं, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जाति, धर्म, झूठे वादों या फिर लालच में आकर नहीं बल्कि सोच विचार कर वोट देना चाहिए। वैसे तो श्रोताओं, हमारे श्रोता बहुत जागरूक हो चुके हैं और ख़ास करके हम युवाओं की बात करेंगे। युवा अपने देश के लिए, अपने लिए बहुत जागरूक हो चुके हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि वो लोग झूठे वादों में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, लालच में बिल्कुल भी नहीं आएंगे और सोच समझ कर ही अपना वोट देंगे। लेकिन श्रोताओं, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उम्मीदवार का व्यवहार कैसा है, उसने समाज के लिए क्या काम किए हैं और क्या वह सच में जनता की आवाज़ बन सकता है, क्या वो अपने वादे पूरे कर सकता है या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। और अगर हम एक ही चीज़ को लेकर चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज चले आ रहे हैं, तो उन्हें हमें छोड़कर अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा और अपनी सोच के हिसाब से देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, हमारे लिए कौन सही है, कहाँ हम सही जगह पर वोट डालेंगे। तो श्रोताओं, याद रखिए, गलत फैसला 5 साल तक असर डाल सकता है लेकिन सही वोट आने वाली पीढ़ियों का भविष्य में भी बदल सकता है। तो इस चुनाव में जागरूक बने, दूसरों को भी जागरूक करें और अपने मत का सही इस्तेमाल करें। ये संदेश रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आप सभी के लिए। और इस संदेश के बाद अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत, गबन। इस फिल्म का गीत श्रोताओं आप सुनने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और इसमें अभी आपने सुना ये गीत जो बताता है कि दोस्त होना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में। दोस्तों के बिना ज़िंदगी सोनी सी लगती है श्रोताओं। और आप सभी श्रोता भी हमारे लिए हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें इस कार्यक्रम को आप सभी 88.4 MHz पर हमीरपुर के डटवाल की आवाज़ पर भी सुन सकते हैं। हमीरपुर के जितने भी श्रोता हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, उन सभी को भी सुषमा की प्यार भरी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में थोड़ी सी बात हम अपनी सेहत को लेकर भी करते हैं। और समय जो है वो हो रहा है 10:13, और इस समय में कई लोगों का नाश्ता हो चुका होगा और कुछ लोग जो हैं वो ज़रूर किचन में होंगे, कुछ ना कुछ बनाने की तैयारी में। या तो वो लंच की तैयारी हो रही होगी या फिर अभी ब्रेकफास्ट की भी तैयारी चल रही होगी। तो आज हम एक ख़ास सब्ज़ी के बारे में बात करेंगे श्रोताओं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ तो उसे लसोड़े कहते हैं, लेकिन आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो आप लोग जानते होंगे। थोड़ी सी रसीली सी सब्ज़ी होती है और छोटे छोटे दानेदार होती है, हरे रंग की। तो श्रोताओं, ये जो सब्ज़ी है ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन कुछ सब्ज़ियों को बनाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, उसकी जो तैयारी है उसमें समय लगता है। इसलिए कई बार हम इन सब्ज़ियों को अवॉइड करते हैं कि कौन बनाए, लेकिन घर में अगर दादियां नानियां हों और बड़े बुज़ुर्ग हों तो बैठकर इस सब्ज़ी की साफ़ सफ़ाई करके इस सब्ज़ी को बनाया जा सकता है। साथ ही श्रोताओं, जिन सब्ज़ियों को बनने में ज़्यादा समय लगता है, मेहनत लगती है, वो सब्ज़ियाँ वैसे भी स्वाद बनती हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो लसोड़े की आज हम बात करेंगे। ये अलग अलग राज्यों में इसे लसोड़ा, लमेड़ा या गोंदी भी कहा जाता है। ये पेड़ सिर्फ स्वाद या छाया देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आयुर्वेद में इसे एक बहुउपयोगी औषधि भी माना गया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में श्रोताओं, लोग जल्दी बनने वाले खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि भिंडी ले लीजिए, जल्दी से काटी, बनाई और बन गई फटाफट। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो हैं वो समय बचाने के लिए फास्ट फूड या पैकेट वाले खाद्य पदार्थ जो है वो खाते हैं। वो खाने में भले ही स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो श्रोताओं, ऐसे में प्रकृति ने हमें बहुत सारे ऐसे फल और सब्जियां दी हैं जो शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती हैं। इन्हीं में से एक है लसोड़ा। लसोड़े में कई ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। यही कारण है कि इसे सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तो जितने भी श्रोता इस सब्जी के बारे में जानते हैं, बनाते हैं, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो श्रोता नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं इसे खोजिए, इस सब्जी को ढूंढिए और ज़रूर एक बार बनाइए। और कैसे बनानी है, कैसे पकानी है, उसके लिए हमारे पास हमारा मोबाइल फ़ोन है, जिस पर जाकर आप इसकी रेसिपी ले सकते हैं और बना सकते हैं और इसका स्वाद भी ले सकते हैं। तो श्रोताओं, अब किचन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब किचन से निकलकर हम बाहर आएंगे और सुनेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो चलिए आप भी सुनिए और आपके साथ हम भी सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ आप जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं प्यारे प्यारे गीत और जुड़े हुए हैं आप अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम थोड़ी सी बात अब हम करेंगे अपनी महिला शक्ति के बारे में। महिलाएं जो कि सिर्फ चार दीवारी तक ही सीमित नहीं रह गई हैं। श्रोताओं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो घर का काम करने के बाद घर से बाहर निकलती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करती हैं और अपने घर को चलाती हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को हमारा सलाम है। और आपको बता दें कि मैक्लोडगंज में एक ऑफिस है जहाँ पर हमारी लोकल महिलाएं जो हैं वो जाकर काम करती हैं, और पिछले कुछ दिनों में उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने हमसे कहा कि वो काम तो करती ही हैं, साथ साथ में रेडियो गुंजन धर्मशाला भी उनके ऑफिस में लगा रहता है सारा दिन, वो एंजॉय करते हैं हर कार्यक्रम को। तो उनके प्यार को हम सलाम करते हैं, उनके प्यार के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं, और आप सभी का प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, तो श्रोताओं उन्होंने ये बताया कि हम छोटे छोटे मोतियों को, छोटे छोटे बीट्स होते हैं, उन्हें एक धागे में पिरोते हैं और ब्रेसलेट, हार, माला, ये सब चीज़ें जो हैं वो बनाते हैं और उस चीज़ को वो लोग बाहर भेजते हैं। तो ये जो नारी शक्ति है ये सारा दिन वहाँ पर बैठ कर काम करती है और साथ ही रेडियो गुंजन धर्मशाला को भी सुनती है। तो उनमें से एक महिला हमारी जो श्रोता है, नियमित श्रोता है, मीना देवी, उन्होंने भी एक फरमाइश भेजी थी कि जब भी आप कार्यक्रम में जाएं तो उनकी पसंद का एक गीत ज़रूर सुनवाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि वो सभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े होंगे और आज भी ज़रूर रेडियो गुंजन धर्मशाला उनके ऑफिस में चल रहा होगा। आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद और इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं मीना की पसंद का एक प्यारा सा गीत, आप भी सुनिए और वो भी ज़रूर सुन रही होंगी, परदेश फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत। और आपको हम बता दें कि कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला भी चलता है, और उसी में अब एक जानकारी और हम जोड़ने जा रहे हैं। श्रोताओं, आप तक पहुंचा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा से 21 जून को आयोजित की जाएगी और छात्रों को 14 जून तक प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। श्री प्रधान ने साथ ही कहा है कि अगले वर्ष से नीट परीक्षा OMR शीट के बजाय कंप्यूटर आधारित मोड में करवाई जाएगी। साथ ही इस बार दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा शहर चुनने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा, ताकि उन्हें यात्रा और अन्य परेशानियों का सामना न करना पड़े। श्रोताओं, री एग्ज़ाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलने वाला है। उन्होंने कहा है कि 3 मई को आयोजित परीक्षा के बाद 7 मई को कुछ शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने तत्काल ये जो एग्ज़ाम है दोबारा से रखा है, तो जिसकी डेट जो है वो निर्धारित की गई है 21 जून को। तो सभी विद्यार्थियों से हमारा यही आग्रह रहेगा कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें घबराना नहीं है। फिर से दोबारा से एक मौका हमें मिला है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाना है और मेहनत करनी है दोबारा से इस पेपर के लिए, और दोबारा से इस टेस्ट में पूरी जान और मेहनत लगानी है। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुँचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और इस जानकारी के बाद अब फिर से हम लौटेंगे मनोरंजन की ओर, यानी कि सुनेंगे एक और प्यारा सा गीत और आपको भी सुनवाएंगे ये गीत सैनिक फिल्म से। और श्रोताओं, इस गीत को आवाज़ों से सजाया है साधना सरगम और कुमार शानू ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और कार्यक्रम में और भी बातें आपके साथ होंगी, जानकारियां भी आप तक पहुंचाई जाएंगी, लेकिन इस समय समय हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे कार्यक्रम में और बातचीत करेंगे आपके साथ, और साथ ही सुनवाएंगे आपको गीत संगीत भी। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। आपका वोट, आपका शहर, आपका भविष्य।
1: क्या आप जानते हैं कि धर्मशाला के विकास में आपकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना कानूनन अनिवार्य है? नगर निगम के नियमों के अनुसार
0: वर्ष में 2 बार वार्ड सभा आयोजित करना अनिवार्य है। ये एक ऐसा लोकतांत्रिक मंच है जहां आप अपने वार्ड की समस्याओं और मुद्दों को सीधा उठा सकते हैं।
1: आपके सुझावों को ही वार्ड विकास योजना और नगर निगम विकास योजना का आधार बनाया जाता है।
0: वार्ड सभा का आयोजन ना करना नागरिकों को विकास की मुख्य धारा से बाहर रखने के समान है।
1: जब आप वार्ड सभा में आते हैं तो आप केवल शिकायत नहीं करते बल्कि समाधान का हिस्सा बनते हैं।
0: भागीदारी आपकी, विकास हमारा उद्देश्य। अपनी समस्याओं को योजना का हिस्सा बनवाएं, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करें।
2: आइए मिलकर बनाएं एक बेहतर और विकसित धर्मशाला।
1: जागरूक बने और अपने हक के लिए आगे आए।
3: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ। आप सभी जुड़े हैं श्रोताओं इस समय, और कार्यक्रम में अंतराल के बाद अब हम फिर से आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की ओर और आपको सुनवाएंगे तेरी कसम फिल्म का ये गीत अमित कुमार की आवाज़ में।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। श्रोताओं कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे आपसे बातचीत। श्रोताओं शिक्षित होने का मतलब क्या होता है? शिक्षित होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं। वो सभी डिग्रियाँ तब कुछ नज़र नहीं आती, ज़ीरो नज़र आती हैं जब हमारे बिहेवियर में वो चीज़ नज़र नहीं आती, हमारी शिक्षा जो है वो हमारे कर्मों से नज़र नहीं आती। बिल्कुल, बहुत शिक्षित अगर हम अपने आप को मानते हैं और अगर हम सोच छोटी रखते हैं, हमारी सोच हमारे विचार पुराने ख्यालात के ही हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी शिक्षा ज़ीरो है। श्रोताओं ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी खबरें हम लोग आए दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं और उन्हें पढ़कर सुनकर जब हमें ये पता चलता है कि पढ़ी लिखी पीढ़ी या पढ़े लिखे युवा जब ऐसे काम करते हैं तो उनका पढ़ा लिखा होना बेकार है, उनकी शिक्षा किसी काम की नहीं। श्रोताओं ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक खबर जो कि हमने सुनी पढ़ी और आपके साथ भी साझा कर रहे हैं कि एक शादी समारोह में बहुत सारी रस्में पूरी होने के बाद वर पक्ष द्वारा बारात लेकर आने से इनकार करने का मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। कन्या पक्ष का आरोप है कि वर पक्ष ने ऐन मौके पर फ्लैट और गाड़ी की डिमांड रख दी। मांग पूरी ना होने पर वर पक्ष बारात लेकर नहीं आया। और साथ ही श्रोताओं आपको बता दें कि उससे पहले रिसेप्शन हुई थी, सगाई के दौरान आभूषण भी दिए गए, शादी समारोह में 30 से 40 लाख रुपए का खर्च भी वधु पर पक्ष वाले कर चुके थे, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही वर पक्ष ने ऐसी डिमांड रखी जिसे कि वधु पक्ष वाले पूरा नहीं कर पा रहे थे और उस वजह से वो बारात लेकर नहीं आए। तो श्रोताओं ऐसी खबरें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि बड़े बुज़ुर्ग तो मान सकते हैं कि पुरानी पीढ़ियों के हैं या पुरानी रीति रिवाजों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन शादी जो कर रहे हैं वो तो युवा वर्ग है। उनकी सोच को क्या हुआ है? उनकी सोच क्यों नहीं डेवलप हो पा रही है? उनकी जो शिक्षा है वो कहाँ ज़ीरो हो गई? वो लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग एक ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए शादी करते हैं, अपने साथी को ढूंढने के लिए शादी करते हैं, ना कि एक फ्लैट और एक गाड़ी लेने के लिए। अगर यही सब चीज़ें करनी हैं तो शादी क्यों करनी है? खुद अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़े होकर पैसे कमाइए और ये सब चीज़ें आप अपने आप कमाइए, तब तो हम आपको माने कि आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर ऐसी बातें करते हैं या ऐसी सोच रखते हैं तो ये सोच बहुत गलत है। अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों ने बदली है और बदलाव की ज़रूरत भी है। तो हम अपने जो युवा पीढ़ी है, अपने श्रोता हैं, उनसे यही कहेंगे कि ऐसी घटनाओं से, ऐसी जानकारियों से जागरूक हुई और अपनी सोच को बड़ा बनाइए, शिक्षित बनिए और सोच को भी बड़ा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो श्रोताओं इस बातचीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं विजय पथ फिल्म का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने ये सुना, ये प्यारा सा गीत राह में उनसे मुलाकात हो गई। तो बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात ऐसे ही कई बार हो जाती है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता, और जब मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। ख़ास करके अपने स्कूल के दोस्त या कॉलेज के दोस्त और ऐसे लोग जब मिलते हैं तो बहुत सारी पुरानी बातें याद आती हैं और बहुत सारे पुराने पल भी याद आते हैं। श्रोताओं, तो अपने दोस्तों के साथ यूँ ही जुड़े रहना चाहिए और यादों के साथ तो हमेशा जुड़े रहना चाहिए। ये यादें ही हैं जो हमें कई बार अकेले बैठकर मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला जिसका समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का, तो आज का समय हमारा अब समाप्ति की ओर है कार्यक्रम में। तो अब मुझे यानी कि आपकी रेडियो दोस्त सुषमा को लेनी होगी आपसे इजाज़त। जाने से पहले आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का आखिरी गीत कुछ कुछ होता है। इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में आप सभी सुनिए, और इस गीत के साथ ही अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए जाने की अनुमति आज के लिए। अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। जय हिंद।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 701817018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: धरती हमारी माँ है, लेकिन आज वो घायल हो रही है। हर दिन कटते पेड़, सूखती नदियाँ और बढ़ता प्रदूषण हमें चेतावनी दे रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियाँ सांस लेने के लिए भी तरस जाएंगी। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाएं, क्योंकि साफ हवा, मीठा पानी और हरियाली ही असली धन है। पर्यावरण बचाना मतलब जीवन बचाना।
1: बंटी, बंटी,
2: बंटी,
1: बंटी, बंटी, बंटी, क्या हो गया तुम्हें? ये रोज रोज क्या?
3: बाबा आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो मुझे बहुत डर लगता है।
1: सॉरी बंटी, आपसे पापा हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, प्रॉमिस।
3: गॉड प्रॉमिस,
1: गॉड प्रॉमिस।
4: सीट बेल्ट ना पहनने से नुकसान आपसे ज्यादा आपके अपनों का हो सकता है, तो गाड़ी में बैठते ही खुद से और सबसे पूछें, पहनी क्या?
5: क्या आपके पार्षद ने साल में दो बार वार्ड सभा का आयोजन किया है?
6: वार्ड सभा, आपका वार्ड, आपकी आवाज।
5: नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुना था ताकि वे उनके निर्देशों के अनुसार काम करें, लेकिन अफसोस रुचिका, ये सेवक से मालिक बन बैठे।
6: क्या आपके पार्षद ने पिछले कार्यकाल में नियमित वार्ड सभा की?
5: क्या उन्होंने आपकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुना?
6: क्या उन्होंने चुनाव के समय किए गए वादे पूरे किए?
5: क्या वह एक सेवक की तरह काम करते हैं या एक शासक की तरह?
6: सावधान, अगर वार्ड सभाओं की उपेक्षा की गई है तो समझ लीजिए कि उन सेवकों ने नागरिकों की आवाज और उनकी पसंद को कुचल दिया है।
5: आपका एक वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके वार्ड और धर्मशाला नगर का भविष्य है।
6: अपना अधिकार पहचानो,
5: सही प्रतिनिधि चुनो,
6: सेवक चुने, मालिक नहीं। न भूलेंगे आवाज अपनी, न भूलेंगे अधिकार। आपका वार्ड, आपकी जिम्मेदारी।
7: कहते हैं लड़कियां दिमाग से नहीं दिल से काम लेती हैं। हंसी तो फंसी, और इनकी ना में भी हाँ होती है। हे,
8: मेरी ना का मतलब सिर्फ ना है, जस्ट फ्रेंड्स।
9: ना कहना आसान नहीं पर जरूरी है। HIV एड्स का चांस ना लें।
8: जवान हूँ, नादान नहीं।
10: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
11: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
10: बात तो सही है।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया।

0: धरती हमारी माँ है, लेकिन आज वो घायल हो रही है। हर दिन कटते पेड़, सूखती नदियाँ और बढ़ता प्रदूषण हमें चेतावनी दे रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियाँ सांस लेने के लिए भी तरस जाएंगी। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाएं, क्योंकि साफ हवा, मीठा पानी और हरियाली ही असली धन है। पर्यावरण बचाना मतलब जीवन बचाना।
1: बंटी, क्या हो गया तुम्हें? ये रोज रोज क्या?
2: पापा आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो मुझे बहुत डर लगता है।
1: सॉरी बंटी, अब से पापा हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। प्रॉमिस।
2: गॉड प्रॉमिस।
1: गॉड प्रॉमिस।
3: सीट बेल्ट ना पहनने से नुकसान आपसे ज्यादा आपके अपनों का हो सकता है, तो गाड़ी में बैठते ही खुद से और सबसे पूछें, पहनी क्या?
4: क्या आपके पार्षद ने साल में दो बार वार्ड सभा का आयोजन किया है?
5: वार्ड सभा, आपका वार्ड, आपकी आवाज।
4: नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुना था ताकि वे उनके निर्देशों के अनुसार काम करें, लेकिन अफसोस रुचिका, ये सेवक से मालिक बन बैठे।
5: क्या आपके पार्षद ने पिछले कार्यकाल में नियमित वार्ड सभा की?
4: क्या उन्होंने आपकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुना?
5: क्या उन्होंने चुनाव के समय किए गए वादे पूरे किए?
4: क्या वह एक सेवक की तरह काम करते हैं या एक शासक की तरह?
5: सावधान, अगर वार्ड सभाओं की उपेक्षा की गई है तो समझ लीजिए कि उन सेवकों ने नागरिकों की आवाज और उनकी पसंद को कुचल दिया है।
4: आपका एक वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके वार्ड और धर्मशाला नगर का भविष्य है।
5: अपना अधिकार पहचानो,
4: सही प्रतिनिधि चुनो,
5: सेवक चुने मालिक नहीं। न भूलेंगे आवाज अपनी, न भूलेंगे अधिकार। आपका वार्ड, आपकी जिम्मेदारी।
6: कहते हैं लड़कियां दिमाग से नहीं दिल से काम लेती हैं। हंसी तो फंसी, और इनकी ना में भी हाँ होती है। हे,
7: मेरी ना का मतलब सिर्फ ना है, जस्ट फ्रेंड्स।
8: ना कहना आसान नहीं पर जरूरी है। HIV/AIDS का चांस ना लें।
7: जवान हूँ, नादान नहीं।
1: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
9: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला

0: नमस्ते नमस्कार आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते है। मैं आपका अपना आरजे सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ कार्यक्रम लेकर चुनाव संवाद। कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश रह रहे होंगे, क्योंकि खुश रहना जो है श्रोताओं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर अभी तो चुनावी बेला है और चुनाव का माहौल है, हर गली हर मोहल्ले में जो है वो दोनों पार्टीज़, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, सभी कार्यकर्ता सभी नेता जो हैं वो पूरा जोरों शोरों से जो है वो लगे हुए हैं। तो चलिए जी, चुनाव संवाद कार्यक्रम में आज की इस कड़ी में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। वार्ड नंबर 2 से भागसुनाग से जो हैं हमारे बीच में अशोक पठानिया जी हमारे साथ हैं। अशोक पठानिया जी, आपका वीडी गुंजन में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया और रेडियो गुंजन में आने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चलिए जी, आपका भी धन्यवाद है। आप बहुत बिजी शेड्यूल में जो है वो यहाँ पर आए हैं और अपनी धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ रूबरू होने के लिए आप वेड़ी गुंजन में आए हैं। बहुत सारे सवाल हैं मेरे जहन में, आपसे जरूर करेंगे, लेकिन आप हमारे गेस्ट हैं और बहुत थके हुए भी मुझे लग रहे हैं, तो अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस करवाने के लिए कौन सा गीत आप सुनेंगे?
1: देखिए, अभी गीत मैं तो यही कहूँगा, पूरी दिन की थकान, क्योंकि ये कन्वेसिंग चली हुई है, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो थकान दूर करने के लिए, तरोताज़ा होने के लिए एक बढ़िया सा पहाड़ी संगीत सुना दीजिए।
0: चलिए जी, हम पहाड़ में रहते हैं और धौलाधार पर्वत बिल्कुल हमारे सामने हैं, इसी बीच में एक पहाड़ी नगमा जो है श्रोताओं आप सभी को भी हम सुनाते हैं आज के हमारे खास गेस्ट अशोक जी की फरमाइश में।

0: एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं चुनाव संवाद। आइए चुनाव संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अशोक जी, नो डाउट कि पर्यटक की दृष्टि से हम देखें तो भागसूनाग वर्ल्ड फेमस है ना जी। हर देश के कोने कोने से लोग जो है वो भागसूनाग घूमने आते हैं, तो यहाँ पर पार्किंग की जो है वो बहुत अहम और गंभीर समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे?
1: देखिए, मैं वार्ड नंबर 2 धर्मकोट बागसू दसान हीरू से बिलोंग करता हूं और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं। तो ये जो वार्ड है हमारा पूरा क्षेत्र पूरा, चाहे वो इंटायर धर्मशाला, तो स्पेसिफिकली हमारा मैकलोडगंज जो एक इंटरनेशनल पहचान बनी हुई है, क्योंकि यहां बहुत बड़े हमारे महामाई दलाई जी रहते हैं, तो उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, योगा सेंटर्स हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, मठ हैं, बागसूनाग टेम्पल अपने आप में है। तो ये पूरा पर्यटन की दृष्टि से एक विकसित बोर्ड है, मैकलोडगंज क्षेत्र है, पर इसमें बहुत सारी खामियां हैं। क्योंकि देखिए, मैं जो संबंध रखता हूं, मैं धर्मकोट से हूं, धर्मकोट का स्थायी निवासी हूं, नीचे हमारा भागसूनाग आ गया, उसके नीचे हमारी दोसालनी एरिया आ गया, पूरा बहुत बड़ा गाँव है, वो भी मैकलोडगंज के समीप लगता है, एडजॉइनिंग है, लास्ट गाँव जो है हीरू। तो ये मेरा वार्ड धर्मकोट गलू देवी से लेके स्पैनो गांव भी आता है, इसमें नीचे हीरू तक है। सबसे बड़ा वार्ड जो हमारे सतारा वार्ड मुस्लिम कॉर्पोरेशन एरिया का है, वार्ड नंबर 2 है। तो यहाँ ना धर्मकोट में पार्किंग है, ना भागसूनाग में पार्किंग है, ना दसालनी में पार्किंग है, ना हीरू में पार्किंग है। और हर घर में गाड़ी है, लोगों के पास गाड़ी है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, रोडों में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लोग बिल्कुल बेचारे मजबूर हैं, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करें। कुछ लोगों के पास पार्किंग अपनी है, पर जो सरकारी पार्किंग होती है एक गवर्नमेंट की तरफ से या पब्लिक पार्किंग, वो आज तक नहीं बनी है।
0: तो क्या लगता है आपको कि इतने सालों से जो है वो भागसूनाग बहुत फेमस है? मेरे ख्याल से 25 से 30 साल से जो है वो भागसूनाग अपने आप में बहुत ही फेमस है, तो क्या लगता है कि सरकारों ने कोई काम नहीं किया पिछले 25-30 सालों से?
1: देखिए, काम हुए
0: पार्किंग को लेकर।
1: हाँ, पार्किंग को लेकर गंभीरता से नहीं सोचा गया, ना गंभीरता से काम हुआ है। इसके ऊपर बहुत गंभीरता से काम होना चाहिए था और इसको एक एक बहुत महत्वपूर्ण विषय समझ के पार्किंग बनाना चाहिए थी, क्योंकि सारे लोग टूरिस्ट जो गाड़ी लेके आते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या आई है। तभी तो 3-3 घंटे का जाम रहता है, चाहे वो धर्मकोट हो, चाहे भागसूनाग, चाहे मैकलोडगंज हो। और जो रोड, कुछ रोड हैं बीच में जो एग्जिट रोड हैं, धर्मकोट से भागसूनाग से नीचे दोसालनी हीरू से निकलते हैं बाहर के लिए, वो जो हैं रोड अभी वैसे की तैसे पड़े हैं, उसमें कोई इतना कोई काम नहीं हुआ है कि उसको एक सीरियस लेके कि नहीं, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इसके साथ जल्दी निपटना चाहिए, उस लेवल का काम नहीं हुआ।
0: चलिए, तो नो डाउट कि अगर लोग आएंगे तो भीड़ भी होगी, पार्किंग की व्यवस्था आप बता रहे हैं कि कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए थी जो कि पिछले कुछ सालों से नहीं हुई है। आप जीतकर अगर वार्ड नंबर 2 से आते हैं तो आप किस तरह से जो है वो पार्किंग को देखते हैं और कहाँ पार्किंग बनाने की आप सोच रख रहे हैं?
1: देखिए, पार्किंग की जो है वो संभावनाएँ बहुत हैं, चाहे धर्मकोट हो, चाहे भागसूनाग हो, चाहे दसानली गाँव हो, चाहे हीरू गाँव हो, ये तो मैनेज करना पड़ेगा, ये तो बनाना ही पड़ेगी लोगों को, आगे आके लोगों को साथ लेके जो जो कंसर्निंग विभाग हैं उनको बता के, सरकार से ये सारा प्रस्ताव देके, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे कोई भी विभाग हो उसमें, तो ये तो बहुत बहुत जल्द और बहुत अति शीघ्र अति युद्ध स्तर पर होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में इतनी मुश्किल होगी कि यहाँ ना टूरिस्ट आएगा और एक बार लोग फंस गए तो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों का देखो, बच्चों की पढ़ाई है, बुजुर्ग लोग रहते हैं, कुछ भी घटनाएं होती हैं, आपदा आती है, डिजास्टर आया था अभी हाल ही में, लास्ट ईयर बरसातों में सड़कें बह गई हैं, जस की तस हैं, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ है, तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है।
0: चलिए जी, आप सभी बने हुए समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं चुनाव संवाद। तो चलिए अशोक जी, ये बताइए कि कूड़ा कचरा और वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बड़ा इशू है भागसूनाग में, तो उसको किस तरह से देखते हैं?
1: कूड़ा करकट, जहाँ तक जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला है, धर्मशाला एक अपने आप में एक स्मार्ट सिटी है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, स्मार्ट सिटी की तरफ से कूड़ा प्रबंधन का जो जो कार्य हो रहा है, कलेक्शन, जो गार्बेज की कलेक्शन है, सेग्रीगेशन ऑफ द गार्बेज, ये चली हुई है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम चला है, वही तो सफल है मेरे नज़रों में। जो घर घर या होटल टू होटल, हाउस टू हाउस जीप्स आती हैं, डिफरेंट जीप्स सुबह आती है, शाम को आती है, जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँचते हैं वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी, विभाग के कर्मचारी, जो कंसर्न लोग लगे हैं, वो कूड़ा डोर टू डोर इकट्ठे कर रहे हैं। इसमें तो मैं ये कहूंगा कि जो आज तक हमने अनुभव किया है काफी अच्छा है, पर इसके बावजूद भी लोग कुछ नालियों में फेंकते हैं, ऐसे रोड पे फेंकते हैं, टूरिस्ट फेंकता है। इस चीज़ को एजुकेट करने के लिए, इस चीज़ का अभियान चला के, इस तरह के प्रोग्राम चला के इसको और सुदृढ़ करना है और इसको इम्प्रूव करना है।
0: चलिए श्रोतों, कार्यक्रम में बातचीत यूं ही चलती रहेगी अशोक जी के साथ। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो जो की सचिन कपूर। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं चुनाव संवाद। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं अशोक जी के साथ। तो अशोक जी, हेल्थ इशू सभी जानते हैं श्रोताओं की, हेल्थ इज वेल्थ है ना, कि अगर हमारा शरीर अच्छा है बेहतरीन है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हेल्थ इशू के बारे में अगर हम बात करें तो क्या लगता है भागसू नाग में वो सारी फैसिलिटीज है हेल्थ से रिगार्डिंग?
1: देखिए, हेल्थ इशू तो आज की दौर के जो परिस्थितियां हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो हेल्थ इशू के लिए तो देखो, अब रोड पे गाड़ियां हैं, जाम लगा हुआ है, लोग चल नहीं सकते हैं। हेल्थ के लिए तो सबसे पहले इसको एक बढ़िया मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, छोटे छोटे पाथ बनाना पड़ेंगे, ग्रीन पैचेस छोड़ना पड़ेंगे। हर किसी ने, लोगों ने, सब ने, इसमें हम सब भागीदारी हैं। सारा कंक्रीट का जंगल बिछा दिया है, इसमें विभाग को भी देखना पड़ेगा, सरकार को भी देखना पड़ेगा, कुछ ग्रीन पैचेस छोड़ना पड़ेंगे और पेड़ लगाना पड़ेंगे ताकि स्वास्थ्य के लिए इसका लाभ मिले। लोग घूमें, पैदल चलें, पार्क में बैठे, थीम पार्क हो, छोटे छोटे बैठने के एक स्थान बने शाम को बैठने के लिए, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, बीमार लोग, और जो खासकर जो विदेशी मेहमान आते हैं वो तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि फॉरेन जो है यूरोप पूरा इतना सुंदर डिजाइन किया उन्होंने, पर हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इसके ऊपर भी कुछ चर्चा होगी, बात करेंगे, सोचेंगे।
0: क्या बात है, भागसू नाग को लेके मुझे ये लगता है अभी तक आपसे बातचीत करके कि आपका विजन जो है वो बड़ा क्लियर है और बहुत प्यारा विजन आपका लग रहा है। तो पार्टी से आप पिछले 40 साल से मैंने सुना है और जाना है कि पिछले 40 साल से जो है वो आपका नाता रहा है पार्टी से, क्या कुछ सीखने को मिला पार्टी से आपको पिछले 40 सालों से?
1: देखिए, पार्टी से तो बहुत कुछ सीखा हमने, काम कैसे करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें रह के क्या क्या करना पड़ता है, क्या डिसिप्लिन होता है, क्या मेहनत करना पड़ती है, वो सारा सीखा हमने। पार्टी के लिए कार्य किया हुआ, छात्र राजनीति से हम NSOI में थे कॉलेज टाइम पे, उसके बाद जब कॉलेज अपनी शिक्षा पूरी करी तो अपने व्यापार में लग गए। बेसिकली मैं एक व्यापारी हूँ, बिजनेस मैन हूँ, होटलियर हूँ, तो समय समय पर पार्टी काम करते आए आज तक। तो पार्टी में रह के हमने देश सेवा, सेवा भाव, जन सेवा सीखी है, सेवा कैसे की जाती है। तो अभी मेरे को प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो मैं तो बहुत सौभाग्यवान समझता हूँ, आभारी हूँ अपनी कांग्रेस पार्टी का और माननीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी का और शीर्ष नेता पार्टी का, और साथ में हमारे जग्गी जी हैं, हमारे एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इस काबिल समझा, सम्मान दिया, और मैं 100% डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। अगर जनता चुन के मेरे को भेजती है, जनता मेरे को इस काबिल समझती है कि अशोक पठानिय जो है बाकी कहीं काम कर सकता है, तो इसके लिए मैं 100% डिलीवर करने की कोशिश करूंगा।
0: क्या बात है, चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अशोक जी के विचार भी आप इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं, इनका विजन जो है वो भी आप सभी सुन रहे हैं। फैसला जो है वो वार्ड नंबर 2 भागसू नाग की जनता के हाथ में है कि इस विजन को धरातल पे उतारना है। जीतेंगे या हार होगी ये तो वक्त बताएगा, फिलहाल हम आपको लेके चलेंगे इस प्यारे से गीत की ओर।

0: रेडी गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम चुनाव संवाद आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आज के हमारे गेस्ट अशोक पठानिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछले 40 सालों से जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से पार्टी से उन्हें क्या कुछ सीखने को जो है वो मिला है। तो आइए चलते हैं, अब बात करते हैं बागसुना की। प्राकृतिक आपदाओं और लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा है बागसुना को, तो वहां पर किस तरह से आप अपनी समझ बनाते हैं?
1: देखिए, ये जो आपदा या लैंडस्लाइड जो भी होता है कहीं किसी स्थान पे, तो वो कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने से ही होता है। तो इसके लिए हम ये सुझाव देंगे लोगों को कि जहाँ जहाँ स्लोप्स हैं, या सरकार से या विभाग से रिक्वेस्ट करेंगे उसको थोड़ा रिटेनिंग वॉल लगाओ, प्लांटेशन करे, उस जो पर्टिकुलरली जहाँ ऐसे सेंसिटिव जोन है उसको प्रोटेक्ट करें। चाहे आप उसमें जिस तरह का भी आपका प्रबंधन है उस मेथड को यूज़ करें ताकि लैंडस्लाइड ना हो और जो लोगों का नुकसान ना हो, कोई जान माल का नुकसान ना हो, सुंदरता बनी रहे, पर्यावरण बचा रहे और प्रकृति जो है वो अपने आप में अच्छी उभर के निकले सामने और लोगों को लगे क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, लोग आते हैं तो लोग इसको बढ़िया से अच्छे से इसका देखें, नज़ारा देखें और समझे कि ये धर्मशाला वाकई में ही अपने आप में एक हिल स्टेशन है और जहाँ जहाँ इतना ऑर्गेनाइज तरीके से भी लोगों ने या सरकार ने ये डेवलप करी है, विकसित करी है। क्योंकि ये आपको पता है हमारा ये धर्मशाला वर्ल्ड फेमस है, इसमें जाना जाता है अपने नेचर के लिए, ट्रैकिंग के लिए, स्नो के लिए और बुद्धिज्म के लिए। हमारे इतने बहुत बड़े धर्मगुरु महामाई दलाराम जी रहते हैं, तो उनकी पहचान से बहुत इंटरनेशनल पहचान, इंटरनेशनल लेवल पर है हमारा मैक्लोडगंज धर्मशाला बागसुनाग, मैक्लोडगंज पूर्व क्षेत्र जो अपर एरिया है। तो ये सब चीज़ें हैं। बागसुनाग में एक बहुत बड़ा मठ है हमारा बागसुनाग मंदिर, तो वो भी विश्व विख्यात है। तो ये सब चीज़ें हमें बचा के रखना पड़ेगी, इसके लिए बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगी, कार्य करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, आपने कहा कि बहुत सारी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, लेकिन लोग अभी जो बागसुनाग के हैं वो मेहनत कुछ और ही चीज़ों में कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो दिन रात हो रही है। कंस्ट्रक्शन जो है वो इस समय बागसुनाग पे इतनी ज़्यादा है कि मुझे ये लगता है कि ओवर कंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुकी है बागसू में, तो उसे किस तरह से आप देखेंगे? क्योंकि हम सभी बखूबी जानते हैं कि हम जोन 5 में जो है वो आते हैं, तो कल को कोई हानि ना हो वहाँ पर, किस तरह से आप वहाँ पर अपनी समझ बनाते हैं, पकड़ बनाते हैं अगर आप वार्ड नंबर 2 से जीत कर आते हैं तो?
1: देखिए, जैसे आपने कहा कि ये जोन 5, ये तो जोन 6 में पड़ रहा था, जोन 6 में आ गया है, तो इसकी सुंदरता को, जैसे पहले कहा मैंने, सुंदरता को बचाए रखने के लिए जो ऐसी कोई आपदा ना आए, लोग यहाँ से जो आते हैं इतना टूरिस्ट आता है वो आता रहे और ये एरिया फ्लॉप ना हो, बहुत सारी चीजें करना पड़ेगी हमें, अपने आप में खुद अपने लोगों को ही बताना पड़ेगा, लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा कि बहुत बड़े बड़े बड़े स्ट्रक्चर ना बने और थोड़े ग्रीन पैचेज रखा जाए, इसको सुंदरता जो मेंटेन की जाए, इसकी हरियाली मेंटेन की जाए और वातावरण भी इतना डिस्टर्ब ना हो, छेड़छाड़ ना हो प्रकृति से। तो इस विषय में हमें काम करना पड़ेगा, विभाग को भी इसमें, सरकार को भी कुछ कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाना पड़ेगी जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जो जो डेवलपमेंट हो रही है उसको उसको नेचर के साथ लेके चलना पड़ेगा।
0: चलिए जी, आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और एक कार्यक्रम सुन रहे हैं चुनाव संवाद। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और लेके चलते हैं आपको इस प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर।

0: FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है। कार्यक्रम चुनाव संवाद आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, और आज के हमारे गेस्ट हैं वार्ड नंबर 2 से भागसूनाग से अशोक पठानिया जी। अशोक जी, किस तरह से देखते हैं स्ट्रीट लाइट्स जो खराब पड़ी हुई हैं, उनमें किस तरह से आप जब जीत कर आते हैं तो सुधार लाएंगे, नई लगाएंगे, और कहाँ कहाँ तक आपकी सोच है कि मैं यहाँ तक जो है वो स्ट्रीट लाइट जो है वो लगाऊंगा?
1: देखिए, स्ट्रीट लाइट तो अभी देखने को लग रहा है या सामने है, दिख रहा है, जो स्मार्ट सिटी के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला में बहुत सारे एरिया कवर करा हुआ है, लाइट्स लगी हैं, स्ट्रीट अच्छी अच्छी जो लाइट्स लगी हैं, इससे अच्छा है, बहुत अच्छा है। रात को टूरिस्ट चलता है, जंगलों में भी लाइट लगी है, धर्मकोट रूट में लगी है, बागसू रूट में लगी है, दसानी रूट में लगी है, निचेरू तक, पर कुछ कुछ एरिए रह गए हैं। तो जीत के आता हूँ, अगर जनता जिताती है, जनता विश्वास करती है मेरे ऊपर और अपना आशीर्वाद, अपना जनमत देती है, तो जो जो एरिया वंचित रह गए, छूट गए हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। और स्ट्रीट लाइट तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, रात को लोग चलते हैं, घूमने निकलते हैं बाहर, और जंगली जानवरों का डर होता है, और आज की तारीख में आए दिन बहुत सारे क्राइम से बढ़ रहे हैं, तो बिना लाइट्स और बिना कैमरे के तो अब जीना असंभव है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रीट लाइट्स।
0: श्रोतो, आप सभी बने हुए हैं वेड़ी गुंजन की इसी गूंज के साथ, यूं ही बने रहेंगे, आप सभी लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: चुनाव संवाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप बात करेंगे अशोक जी से सड़कों की, क्योंकि टूरिस्ट आता है, नो डाउट वर्ल्ड फेमस है भागसूनाग। टूरिस्ट आता है, चाहे हमारे जो क्षेत्र के निवासी है वो वहाँ पर घूमने आते हैं, चाहे वो हम बात करें पंजाब की, हरियाणा की, जम्मू कश्मीर की, इस स्टेट के लोग जो है वो भागसूनाग में घूमने आते हैं। हम खुद भी कई बार जो है वो घूमने भागसूनाग चले जाते हैं। कांगड़ा के लोग आते हैं, हमीरपुर के, हिमाचल के कोने कोने के लोग जो है वो भागसूनाग में आते हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि वहाँ की सड़कें जो है वो किस तरह से आप विकसित कर सकते हैं?
1: देखिए, सड़कें अभी तो हमारे इस ऊपरी क्षेत्र की सड़कें बहुत छोटी हैं और पहाड़ी क्षेत्र है, असंभव भी नहीं है कि बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाए। तो अब कुछ कुछ सड़कें जो है निर्माणाधीन है, प्रॉपर जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे दो सड़कें ऊपर इंद्रनाग से, एक ऊपरी क्षेत्र से बागसू कनेक्ट कर रही है, एक नीचे वाली सड़क जो है वो नीचे हीरू गांव में कनेक्ट कर रही है, उस पर प्रकार्य किया हुआ और दोनों का उद्घाटन जो सड़क का जो फाउंडेशन स्टोन और कार्य शुरू किया था, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्कू जी खुद समय आके अपने कर कमलों से करके गए हैं और काम हो चुका है काफ़ी सारा। दो पुल बाय रोड पे जो बागसू कनेक्ट करेगा, नीचे वाला पुल काम चला हुआ है, उसको थोड़ा सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि थोड़ा स्पीड अप हो और जल्दी से जल्दी जो जो रोड्स हैं बागसू से हो, चाहे धर्मकोट से हो, चाहे मेकलगंज से हो, एग्जिट रोड जो है, जो टूरिस्ट आता है तो बाहर डिफरेंट रोड से निकल सकता है, ईजिली ट्रैफिक मूवमेंट हो सकती है, जो जिसके लिए हमें सब जनता परेशान है, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस की सेवाएँ कई बार रुक गई हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को हुई है, दिखी भी हैं, तो वो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उन रोड को जल्द जल्द ठीक करवा के, ताकि सारे रोड चले, ट्रैफिक यातायात से सिस्टम स्मूथली चले और लोग पैदल चलें। आज की जो तरीका है, जो समय चला हुआ है, लोग सड़कों पे नहीं चल सकते हैं, सिर्फ गाड़ियां ही दिखती हैं और लोग वॉक नहीं कर सकते।
0: चलिए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अशोक जी से बातचीत यूं ही चलती रहेगी, श्रोताओं लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

0: एफएम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और एक कार्यक्रम इस वक्त चुनाव संवाद चला है आपके अपने रेडियो सेट पर। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं अशोक जी हैं जो कि वार्ड नंबर 2 से हैं, कांग्रेसी प्रत्याशी हैं और जीतने की पूरी होड़ है, पूरी उम्मीद है और पूरी ललक भी है। तो आइए चलते हैं अशोक जी के पास। अशोक जी किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चिट्टा जो है वो पूरे हिमाचल में घर कर चुका है और हिमाचल के हर गली हर नुक्कड़ में जो है वो चिट्टा फैल चुका है। नो डाउट टूरिस्ट प्लेस है भागसुनाग, वहां पर भी चिट्टे का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। जीत कर आते हैं तो किस तरह से देखेंगे इन सूखे नशों को, किस तरह से आप वार्ड नंबर 2 में बंद करेंगे?
1: देखिए, नशा जो है आज की तारीख में बहुत ज्यादा पांव पसार चुका है और जो नौजवान बच्चे हैं इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। एक और लोग अपना पढ़ाई छोड़ के छोटी उम्र में ही इस तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी ने भी इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, बहुत सारे स्कूलों में इंस्टीट्यूट्स में जाके ये सारा एक प्रचार किया है, प्रसार भी किया है, इसके ऊपर काफ़ी कार्यक्रम चलाए हैं और काफ़ी हद तक सफल हुआ है। और सभी विभाग जो हैं हमारे कंसर्निंग, चाहे पुलिस हो चाहे जो भी इसके ऊपर कार्य करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी ये चलाए हुए अंदर अंदर से। तो अब चिट्टे के ऊपर तो नियंत्रण आया है, मेरे जो संज्ञान में ध्यान में है, क्योंकि इसका एक बहुत सारा प्रचार हो रहा है। तो अब लोगों पकड़े भी गए हैं, लोग उनको सजाएं भी हुई हैं, जेल भी गए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अच्छा एक अभियान चला हुआ है और इस अभियान में हमें जल्दी सफलता मिलेगी। और अगर अगर हम जीतते हैं, जनता जिताती है, जनता हमें आशीर्वाद देती है, तो इसके ऊपर भी हम सब मिलके और कार्य करेंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी, पहल थी जिन्होंने ये अभियान चलाया, उसको और सफल बनाएंगे और भविष्य में लोगों को, बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेके जाएंगे, इसे मुक्त कराएंगे, चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाएंगे, आदर्श हिमाचल बनाएंगे। अपना भागसुनाग धर्मकोट दसालनी रोग जो वार्ड नंबर 2 है, इसको आदर्श वार्ड बनाएंगे।
0: बहुत बढ़िया। क्या कुछ करेंगे युवाओं के लिए आप, अगर आप जीत कर आते हैं तो किस तरह का विजन है युवाओं के लिए आपका?
1: युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, देखिए हमारा वही मैंने जैसे पहले कहा कि ये टूरिस्ट प्लेस है, टूरिज्म है, यहाँ पे टूरिज्म पे बेस्ड है, लोग सारा लोगों का जीवन

0: इस विषय में पढ़ेंगे नहीं, अनपढ़ रह जाएंगे, प्रोफेशनल नहीं करेंगे, प्रोफेशनल तौर पर नहीं करेंगे, तो वो सक्सेस रेट भी घटेगा, स्टैंडर्ड नहीं आएगा, और जो एक अच्छा मॉडल होता है टूरिज्म, एक विकसित टूरिज्म दिखता वो नहीं दिखेगा, तो इसमें फिर सारी चीज़ें भटक जाएंगी, क्योंकि फिर वही जैसे पहले कहा आपने, चिट्टा नशा, किसी प्रकार का नशा, और तो वो तो फिर साथ साथ चलेगा। जो शिक्षित व्यक्ति काम करेगा, प्रोफेशनल व्यक्ति काम करेगा, तो वो पैसा भी कमाएगा, अपने एनवायरमेंट को भी बचाएगा, संस्कृति को भी बचाएगा, अपने आप को भी बचाएगा, क्षेत्र को भी बचाएगा।
1: क्या अशोक जी आप इस तरह की सोच रखते हैं कि भक्सुनाग में ओपन जिम भी हो, ताकि युवा जो है वो वहां पर भी अपना समय व्यतीत कर सके? क्या आप इस तरह की सोच रखते हैं कि भक्सुनाग में एक प्लेग्राउंड भी होना चाहिए, जहां पर युवा जो है वो अपना खेल कूद की ओर जो है वो ध्यान बढ़ाए?
0: बिल्कुल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जरूरी एक चीजें हैं जो जो जीवन में रहती हैं। और अभी देखो, आपने भी देखा होगा, सबने देखा है कि कुछ कुछ वार्डों में जिम्स हैं, छोटे पार्क बनाए हैं, पर एक बहुत बड़ा वार्ड है उसकी पॉपुलेशन 3,000-4,000 है, तो एक जिम बना के, एक पार्क बना के नहीं चलेगा। जहाँ जहाँ संभव है छोटी छोटी मोहल्ला पार्किंग बनाएं, छोटे छोटे पार्क बनाएं और जिम्स बनाएं, ताकि जो जो आज के नौजवान हैं वो अपनी अपनी सेहत और स्वास्थ्य के लिए वहाँ काम करें, ना कि मोबाइल लेके बैठ जाए, चिट्टे की तरफ चला जाए, गलत कामों में लगे, सुबह शाम अपना सेहत की तरफ दौड़े, और उसका ध्यान जो है पूरा शिक्षा और स्वास्थ्य पे होना चाहिए।
1: FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है, और चुनाव संवाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो चलिए श्रोताओं, वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, फिर किसी कड़ी में आपसे मुलाकात जरूर होगी। लेकिन आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। वार्ड नंबर 2 के ये प्रत्याशी हैं, धर्मकोट के ये रहने वाले हैं, अशोक पठानिया जी इनका नाम है, और जाते जाते क्या गुहार जो है वो जनता के साथ लगाना चाहते हैं, आप सुनिए अपने वीडियो गुंचन पर।
0: मैं, मेरा जनता को ये संदेश है कि मैं चुनाव में उतरा हूँ, प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 2 से, तो अगर जनता आशीर्वाद देती है, मेरे को जिताती है, मेरे ऊपर विश्वास करती है, तो जीत के आऊंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा बहुत सारा अनुभव भी है, पहले मैं मनोनीत पार्षद रहा हूँ, बहुत सारी एनजीओ में काम करते आए हूँ, कर भी रहा हूँ, करूँगा भी, और जो अपना अनुभव है, जो जो मेरा काम करने का तरीका है, सीखा है मैंने, पार्टी से सीखा है, लोगों से सीखा है, एनजीओ में सीखा है, उसको डिलीवर करूँगा, शेयर करूँगा, और मेरा उद्देश्य भी है कि इस में काम करना और लोगों को जागरूक करना, लोगों की सेवा करना और चीज़ें को दुरुस्त करना, और जीतूँगा तो अवश्य 100% डिलीवर करूँगा, और जो मेरा एक टैलेंट है, कैलिबर है, उसको लोगों के साथ शेयर करूँगा और अपना डिलीवर करूँगा।
1: चलिए ये फैसला छोड़ते हैं हम भक्सुनाग की जनता के ऊपर, वार्ड नंबर 2 की जनता के ऊपर, कि किस तरह का वो फैसला लेती है। और अगर फैसला आया अशोक पठानिया जी आपके हक में, तो मुलाकात होगी इन्हीं सवालों के साथ। तब तक मुझे यानी कि आरजे सचिन कपूर को दीजिए आप सभी इजाजत। नमस्ते धर्मशाला।
0: आपका बहुत बहुत

0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: If you've heard me earlier,
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और नॉट।
0: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी से 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एक मुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नेट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नेट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरला, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 701-8170-1811-970-91। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: धरती हमारी माँ है, लेकिन आज वो घायल हो रही है। हर दिन कटते पेड़, सूखती नदियाँ और बढ़ता प्रदूषण हमें चेतावनी दे रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियाँ सांस लेने के लिए भी तरस जाएंगी। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाएं, क्योंकि साफ हवा, मीठा पानी और हरियाली ही असली धन है। पर्यावरण बचाना मतलब जीवन बचाना।
1: बंटी, बंटी,
2: बंटी,
1: बंटी, बंटी, बंटी, क्या हो गया तुम्हें? ये रोज रोज क्या?
3: पापा आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो मुझे बहुत डर लगता है।
1: सॉरी बंटी, अब से पापा हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। प्रॉमिस।
3: गॉड प्रॉमिस।
1: गॉड प्रॉमिस।
4: सीट बेल्ट ना पहनने से नुकसान आपसे ज्यादा आपके अपनों का हो सकता है, तो गाड़ी में बैठते ही खुद से और सबसे पूछें, पहनी क्या?
5: क्या आपके पार्षद ने साल में दो बार वार्ड सभा का आयोजन किया है?
6: वार्ड सभा, आपका वार्ड, आपकी आवाज।
5: नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुना था ताकि वे उनके निर्देशों के अनुसार काम करें, लेकिन अफसोस रुचिका, ये सेवक से मालिक बन बैठे।
6: क्या आपके पार्षद ने पिछले कार्यकाल में नियमित वार्ड सभा की?
5: क्या उन्होंने आपकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुना?
6: क्या उन्होंने चुनाव के समय किए गए वादे पूरे किए?
5: क्या वह एक सेवक की तरह काम करते हैं या एक शासक की तरह?
6: सावधान, अगर वार्ड सभाओं की उपेक्षा की गई है तो समझ लीजिए कि उन सेवकों ने नागरिकों की आवाज और उनकी पसंद को कुचल दिया है।
5: आपका एक वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके वार्ड और धर्मशाला नगर का भविष्य है।
6: अपना अधिकार पहचानो,
5: सही प्रतिनिधि चुनो,
6: सेवक चुने, मालिक नहीं। न भूलेंगे आवाज अपनी, न भूलेंगे अधिकार। आपका वार्ड, आपकी जिम्मेदारी।
7: कहते हैं लड़कियां दिमाग से नहीं दिल से काम लेती हैं। हंसी तो फंसी, और इनकी ना में भी हाँ होती है। हे,
8: मेरी ना का मतलब सिर्फ ना है, जस्ट फ्रेंड्स।
9: ना कहना आसान नहीं पर जरूरी है। HIV/AIDS का चांस ना लें।
8: जवान हूँ, नादान नहीं।
10: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
11: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता और चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
10: बात तो सही है।

दोस्तों मैं हूँ आप दोस्तों मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।
1: आओ चुप बरानू मात पाऊं दिहाई ही।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आजी दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918170910। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि

0: धरती हमारी माँ है, लेकिन आज वो घायल हो रही है। हर दिन कटते पेड़, सूखती नदियाँ और बढ़ता प्रदूषण हमें चेतावनी दे रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियाँ सांस लेने के लिए भी तरस जाएंगी। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाएं, क्योंकि साफ हवा, मीठा पानी और हरियाली ही असली धन है। पर्यावरण बचाना मतलब जीवन बचाना।
1: बंटी, बंटी,
2: बंटी,
1: बंटी, बंटी, बंटी, क्या हो गया तुम्हें? ये रोज उसका
3: बाबा, आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो मुझे बहुत डर लगता है।
1: सॉरी बंटी, आपसे पापा हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, प्रॉमिस।
3: गॉड प्रॉमिस,
1: गॉड प्रॉमिस।
4: सीट बेल्ट ना पहनने से नुकसान आपसे ज्यादा आपके अपनों का हो सकता है, तो गाड़ी में बैठते ही खुद से और सबसे पूछें, पहनी क्या?
5: क्या आपके पार्षद ने साल में दो बार वार्ड सभा का आयोजन किया है?
6: वार्ड सभा, आपका वार्ड, आपकी आवाज।
5: नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुना था ताकि वे उनके निर्देशों के अनुसार काम करें, लेकिन अफसोस रुचिका, ये सेवक से मालिक बन बैठे।
6: क्या आपके पार्षद ने पिछले कार्यकाल में नियमित वार्ड सभा की?
5: क्या उन्होंने आपकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुना?
6: क्या उन्होंने चुनाव के समय किए गए वादे पूरे किए?
5: क्या वह एक सेवक की तरह काम करते हैं या एक शासक की तरह?
6: सावधान, अगर वार्ड सभाओं की उपेक्षा की गई है तो समझ लीजिए कि उन सेवकों ने नागरिकों की आवाज और उनकी पसंद को कुचल दिया है।
5: आपका एक वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके वार्ड और धर्मशाला नगर का भविष्य है।
6: अपना अधिकार पहचानो,
5: सही प्रतिनिधि चुनो,
6: सेवक चुने, मालिक नहीं। न भूलेंगे आवाज अपनी, न भूलेंगे अधिकार। आपका वार्ड, आपकी जिम्मेदारी।
7: कहते हैं लड़कियां दिमाग से नहीं दिल से काम लेती हैं। हंसी तो फंसी, और इनकी ना में भी हाँ होती है। हे,
8: मेरी ना का मतलब सिर्फ ना है, जस्ट फ्रेंड्स।
9: ना कहना आसान नहीं पर जरूरी है। HIV एड्स का चांस ना लें।
8: जवान हूँ, नादान नहीं।
10: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
11: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
10: बात तो सही है।

0: नमस्ते नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्स पर ये है तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई यो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक ता शुतो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारियां दा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तो वह सारे ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा रोज़ाने दा काम कार है इसे ज़रूर करा दे उन्हें न तो तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र करने यहाँ करने जुड़ सकते कने यहाँ करने गलबात जेड़ा इसे ज़रूर करी सकते। तो जो तुम सफ़र तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक तो जल्दी जल्दी कार्यक्रम करने जुड़ा करने गलबात भी जरूर करा कने जेड़ा तुह दियाँ फरमाइशा न सभी इस कार्यक्रम च तो हाँ सारे ही सुनी सकते। तो श्रोताओं मौसम दी ओर अगर अहाँ अपनी जेड़ा नज़र है से अहाँ बार बार जरूर दौड़ाते न कि मौसम जेड़ा है से अहाँ जो क्या संकेत जेड़ा है से दे दे कने मौसम दे अनुसार चलना अहाँ वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है। तो श्रोताओं जेड़ा 4 जिले जेड़ा से बारिश का अलर्ट जेड़ा से जरूर दस्या तो तुहां सारे जो भी पता है कि मौसम के अनुसार चलना अहां वास्ते बड़ा ज़्यादा जरूरी है। तो पहले अहां अहां दे जेड़ा पहले श्रोता न तिना कन्ने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी
0: स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी ठीक ठाक। तो हाँ सुना किधे है ना?
0: ठीक ठाक है, ठीक ठाक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, क्या काम कार लगाया तो हाँ क्या करा थे?
1: काम कार क्या लगाना प्यागा कारण को तोटी है ना सर सुकना पाजी थी ले पा रहा था क्या बांदर बड़े तंग करा दे
0: जी। अच्छा कणका दे पैरा बैठे हो?
1: हाँ कणका पैरा बैठे हो सुकना पाजी ने तोटी है प्यागा
0: जी जी।
1: हाँ बंदर बड़े तंग कर देना
0: जी।
1: हाँ सकाना पौन धोना पौन धोती
0: जी धोना भी पौनी अपना
1: यहाँ करने का गड़बड़ करने ऐसे क्या चुप लगी है पड़ी
0: है जी। जी तो वैसे भी 18 तारीख तक जेड़े से चंबा कांगड़ा कुल्लू मंडी जेड़े से चेतावनी दसी हुए मौसम विभाग ने ना जी बारिश
1: दी। हां जी हां जी
0: हां जी जी ता
1: तो है बरखा होगी कल मैं लई पौना चुकना बरखा होगी पूरी पानी जमे तो भला भी ये कल तक तक ही लाड़ी
0: जी जी।
1: हां
0: जी और नोएडा जी
1: और नोएडा जी क्या खानी बस यही अली जितनी तैयारियां ना अली प्याज कुटने की वो लसन कुटने की
0: जी। हां जी ता अली प्याज भी पुटने हुए है कने लसन भी पुटने हुए ना जी अली।
1: हां जी हां जी हां जी जी पर बरखा खराब ना करी दे ना
0: जी जी कुठी ना कुठी मौसम भी परेशान जड़े से जरूर करता है ना जी।
1: हां जी हां जी हां
0: जी ता तो हां कुंडिया गीत सुनना पसंद कर गई जी।
1: आज छह गीत सुनाई हो बन बुढ़िया बन गठड़ी आया राम दा बुलावा बुढ़िया बन गठड़ी
0: जी। राम दा बुलावा आया
1: बुढ़िया बन गठड़ी
0: जी जी जरूर ये जड़ी फरमाइश है से तुह तक पहुंचांदे जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा ब्याह भी हो जाते याद करना पड़ी
0: जी जी जरूर जी। रेडियो गुंजन धर्मशाला जो कने रेडियो गुंजन धर्मशाला दे जितने भी कार्यक्रम मन सहन दे श्रोता अगर प्यार दिन दे न तो बड़ी अच्छी गल है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: जी जी हाँ दे श्रोता हाँ जो हमेशा अपनी जेड़ा फीडबैक ऐसे दिन दे रहन दे ना जी।
1: हाँ जी
0: जी
1: तो हाँ दे भी नहीं है गल्ला सुनने मिली है नहीं है ना
0: जी जी
1: कुछ के यहाँ हाँ रेडियो लगाया अंदर था कुछ की गल्ला मिली है नहीं है सुनने
0: जी। रेडियो एक ऐसा माध्यम है ना जी से हाँ जो कभी भी खाली महसूस नहीं होना दिंदा ना जी।
1: हाँ जी
0: जी जी जी ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੇ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
0: ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੀ ਜੁੜਨੇ
1: ਬੜਾ ਬੜਾ
0: ਵਾਸਤੇ
1: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ
0: ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ
1: ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ 18 ਮਈ ਤੱਕ। 16 ਮਈ ਦੀ ਅਗਰ ਆਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਨੇ ਦਿਨੇ ਦੀ ਆਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਚੰਬਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਗਰਜ ਕਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤੁਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਨੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਆਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਨੇ ਆਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਕਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਨੇ ਕਰਦੇ ਨਾ।

श्रोताओं तो सारे सुना ये प्यारा दे आ गीत प्यारी दे फरमाइश तो ये फरमाइश तो जरूर इंजॉय की होनी है कने ये फरमाइश अहां जो आई हुए तपोवन ते कने तिना तक अहां ये फरमाइश पहुंचाई कने तुहां सारिया भी इंजॉय की। तो श्रोताओं अहां हमेशा अपनी जिंदगी जो अच्छा बनाने वास्ते कुछ ना कुछ मेहनत जड़ा से जरूर करते न अपने जड़ा प्रयास हैं से अहां जरूर करते न पर अहां जड़ा सोचते न सही अहां अपनी जिंदगी च करते न पर कई बार होंदा ना कि अगर अहां अच्छा सोचते न तो अहां अपनी जिंदगी जो बेहतर जड़ा से जरूर बनाई पाते न पर बेहतर ताई बनती है जैलू अहां मेहनत करते न क्योंकि हर चीज़ मेहनत ने चलती है मेहनत बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर अहां मेहनत करके ताई अहां अपने जड़ा काम मान तिना जो हासिल जड़ा है से जरूर कर सकते कने जिंदगी है जिंदगी जड़ा है से अहां जो हमेशा नए नए जड़ा सबक है से जरूर दिंदी है जिंदगी से जड़ा उतार चढ़ावन से हमेशा अहां दे जड़ा सामने न से जरूर आंदे न कने अहां तिना उतार चढ़ावन दा जड़ा सामना है सभी जरूर करते न पर अगर अहां गल करिए गुस्से दी या प्यार दी तो सारे जो पता है कि अगर अहां हमेशा गुस्सा करते न तो गुस्सा जड़ा है से हर चीज़ जो बिगाड़ींदा है पर कई कबार जड़ा है से गुस्सा करना भी जरूरी है अगर हमेशा कोई ज़्यादा लिमिट करो

करता है तो हाँ कई बार चिड़ैल से गुस्सा भी कर देना। अपनी जगह गुस्सा भी करना थोड़ा देर ज़रूरी है, जलू लिमिट से ज़्यादा कोई भी काम होता है तो हाँ गुस्सा करना चिड़ैल से शुरू कर ही देना। चाहे से पेरेंट्स अपने बच्चे पर कर देना, पेरेंट्स भी अपने बच्चे वास्ते हमेशा अच्छा ही सोच देना, हमेशा ही सोची करी चल देना कि यहाँ दे जेड़ा बच्चे ना से हमेशा खुश रहना, कि अपनी ज़िंदगी च जेड़ा तरक्की है से ज़रूर करना। तां गुस्सा कने प्यार, प्यार दी अगर अहाँ गल करना तो प्यार हर चीज़ जो बनाई करी रखता है। प्यार अगर अहाँ अपने अंदर रख देना या अपनी जेड़ा बोली है से मिठी रख देना तो कुछ ना कुछ ये जेड़ा अहाँ दी बोली है से अहाँ जो एक ही दुए ने जोड़ी करी रखती है। तो श्रोताओं थोड़ा दिया सोच विचार करने की ज़रूरत है, तो हाँ भी सोच विचार करा कने हाँ भी जेड़ा तुहा वास्ते जेड़ा तुह दियाँ प्यारियाँ प्यारियाँ फरमाइशा ने से पहुँचा देना, कने तुहा सारी भी इस कार्यक्रम दे सफ़र करने जुड़ी सकते। जुड़ने वास्ते जेड़ा हाँ दा नंबर है से तुह सारे नोट करा, नंबर है 7081117091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना, पर से फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तो ज़रूर इस फरमाइश जो तुह तक पहुँचा देना।

दर्शुता तो हजारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश। हाँ, तो वहाँ तक दस्या था कि फरमाइश जिड़े से व्हाट्सएप के माध्यम ने यहाँ तक पहुँची हुए जरूर तिना का जिड़ा ना है से भी तो वहाँ तक पहुँचाई दे कने से कुछ दे रहने वाले ने सभी जरूर तो वहाँ तक पहुँचाना है। तो ये फरमाइश आह जो आई हुए खनियारा ती कने तिना का ना वे चरणदास जी, चरणदास जी तक अहाँ ये गीत पहुँचाया कने जितने भी बाकी श्रोता कार्यक्रम सुना देन तिना तक भी अहाँ जिड़ा गीत संगीत पहुँचाते न कने तिना दियाँ जिड़ा फरमाइशा न सभी तिना तक अहाँ पहुँचाते न। दर्शो तो फिर ते अहाँ अपनी जिड़ा गलबात है तिहा पर वापिस आते न क्योंकि गलबात करना भी थोड़ा दिया जरूरी है कने गीत संगीत पहुँचाना भी तुहां तक जरूरी है। 16 मई 2026 की अगर अहाँ गल करिए आज अहाँ जिड़ा खास दिन बना देन से बना देन शांति जिड़े से अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिड़े से आज अहाँ बना देन। अगर अहाँ अपने अंदर समाज अंदर शांति रख देन या एकजुटता जिड़े से रख देन ताई अहाँ जिड़ा शांति है से अपने समाज अंदर या अपने देश अंदर जिड़े से रखी पाते न। मैं पहले भी तुहां कने गल की थी कि अहाँ कोई भी काम करते न अगर अहाँ प्यारे ने कोई काम करते न तो उससे काम बड़े प्यारे ने जिड़े से हो जाता है कने अगर अहाँ उसी काम जो गुस्से ने करते न या प्यार भावना जिड़े से एक दूसरे अंदर नहीं रखते न तो कुछ ना कुछ से काम जिड़े से प्यार भावना ने नहीं करी पाते न। तो हर चीज़ का जिड़ा सल्यूशन है से प्यार भावना ने अगर अहाँ कोई काम करा देन तो बड़ी अच्छी गल है कने जिड़ा पवित्रता एकता है अगर अहाँ पवित्रता एकता जिड़े से रखते न तो कुछ ना कुछ अहाँ अपने जिड़ा धर्म है या अपनी जिड़ा संस्कृति है अपनी जिड़ा भाषा है ते जो जिड़े से एक साथ जिड़े से मिली करी अहाँ जिड़े से संभाली रखते न कने अहाँ की जिड़ा संस्कृति है से अहाँ जो हमेशा ये सिखाती है कि एक दूसरे ने जिड़े से प्यार भावना जिड़े से रखनी है। तो शो तो कार्यक्रम च अगे बढ़ते न कने अगली जिड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न सुनते न सा प्यारी दिया फरमाइशा जो

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने कने इसी कन्ने तो हाँ ये गीत जड़े से सुनिया कने फिर त्यहाँ वापिस तो हाँ तक आई हो न अपनी जड़ा गलबात ले करी कने तो हाँ अगर अपना रेडियो सेट होना उनके तहत तो हाँ सारे जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा नमस्ते है। तो जल्दी जल्दी कॉल करा इंतजार मत करा क्योंकि तो हाँ सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम दा जिहड़ा सफ़र है से तो हाँ तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक कने सफ़र कने तो हाँ जरूर हम सफ़र जिहड़े से बनदे न 2:26 जिहड़ा न कार्यक्रम चो इं या 27 मिनट जड़ा न कार्यक्रम चो इं कने आंदी जेड़ा गलबात भी चली हुआ है कने आंदे जेड़ा प्यारे प्यारे श्रोता न सभी यहाँ कने जुड़ा दे न जुड़ा दे भी कने कॉल या टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज भी अहाँ तक अपनी जेड़ा फरमाइश है से ज़रूर पहुँचा देन कने आज अहाँ जेड़ा गलबात करा देन 16 मई जो आज हाँ जेड़ा खास दिवस बना देन शांति कन्ने जेड़ा से एक मतलब एक ही यानी कि सोगी रहने दा जेड़ा अंतर्राष्ट्रीय जेड़ा दिवस है से यहाँ बना देन तो हाँ भी ज़रूर मेरी गलबात जेड़ा से ज़रूर सुना दे उन्हें न क्योंकि जिंदगी है जिंदगी तो छोटी दी है पर यह जिंदगी जो जीना किस तरीके ने है से यहाँ पर निर्भर करता है भेदभाव का जेड़ा अंत है सियाहन जो करना है क्योंकि समाज लिंग जाति धर्म रंग के आधार पर जेड़ा होने वाले भेदभाव हैं तिना जो अहम जो बिल्कुल ख़त्म करना है क्योंकि समाज की जेड़ा भविष्यता से एकता है। अगर अहाँ मिली जुली कर कोई भी काम करते हैं ना चाहे से समाज है चाहे अहाँ परिवार की गल करिए हमेशा अहाँ परिवार की जेड़ा गल है से कर देना कने बाकी जेड़ा कार्यक्रम हैं तिना च भी परिवार की जेड़ा गल है से हमेशा होंदी है। तो परिवार जेड़ा है से अहाँ की जिंदगी बड़ी अहम भूमिका जेड़ा है से अदा करता है अगर अहाँ परिवार कन्ने प्यार स्नेह जेड़ा से रख देन तो तिना ही अगर अहाँ समाज की गल करिए अगर अहाँ कोई भी काम जेड़ा से एकजुट कन्ने करते न तो कुछ ना कुछ समाज जेड़ा से अहदी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। इसी सोगी अगर अहाँ अपनी प्रकृति की गल करते न तो मिली जुली करी अगर अहाँ एक समाज जेड़ा से अपनी प्रकृति की रक्षा करता है या पेड़ पौधे लगाता है तो अहाँ अपनी प्रकृति की रक्षा जेड़ा से जरूर करी पाते न कने पेड़ पौधे जेड़ा से अहाँ वास्ते कितने ज़्यादा जरूरी हैं से तो हाँ सारे जो ही पता है पेड़ जेड़ा है से अहाँ जो छाँव भी दिंदा है अहाँ जो जेड़ा हवा है से भी दिंदा है फिर अहाँ जो फल भी दिंदा है अहाँ जो सब्जी जेड़ा है से अहाँ बोली सकते सभी दिंदा है क्योंकि नेचर जेड़ा है से अहाँ वास्ते हमेशा अच्छा ही जेड़ा है से सोचता है पर कुछ ना कुछ इंसान जेड़ा है से अपनी प्रकृति वास्ते अच्छा नहीं सोचता है हमेशा अपना जेड़ा फायदा है से कुछ ना कुछ यहाँ दिख देन तो आशो तो अपना फायदा जेड़ा से थोड़ा नहीं दिखना है कने सारे वास्ते सोचना है क्योंकि सोच विचार अगर अहाँ सकारात्मक रख देन तो कुछ ना कुछ ये सोच अहाँ जो हमेशा सफलता की ओर लेकर ही जाती है। तो थोड़ा दे आगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुम तक पहुँचा देन तो हाँ सारी भी ऐसा प्यारी दिया फरमाइश है जो ज़रूर इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, तो सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने अपना मनपसंद कार्यक्रम माटी दी महक ये सफर तो तक रहने दो ते तीन बजे तक कने तो सारे ये गीत फरमाइश सुनी कने फिर ते हाँ जिड़ा अपनी गल बात है तेरे ऊपर वापिस जड़ा से जरूर आई उन कने जिड़ा समय है सभी अपनी रफ्तार लेकर चल रहा है तो समय के अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते जरूरी है। तो थोड़ा देर फिर तो यहाँ अगे बढ़ते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुम तक पहुँचाते न तो तुह सारे इस प्यारी दिया फरमाइशा जो जरूर जड़ा है इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंथी।

तो श्रोताओं इस गीत की फरमाइश आ जो आई हुए व्हाट्सएप के थ्रू कने तिना दा नाव है अजय जी कने से रहने वाले न गोपालपुर ते तिना तक कहाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय की थी तो श्रोताओं फरमाइश भी तो हाँ जरूर इंजॉय की थी होनी है कने मेरी जेड़ा गलबात है सभी जरूर जेड़े से इंजॉय करा दे होने न तो श्रोताओं हर जगह शांति होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हाँ समाज शांति जड़े से रख देना तो हाँ अपने जीवन जो अपने समाज जो जड़े से खुशहाल जड़े से बनाई पाते न कने अगर हाँ नफरत जड़े से एक दूसरे अंदर रख देना तो नफरत जड़े से हर जगह तबाही जड़े से ज़रूर करती है। तो प्यार भावना ने हर काम जड़े से अच्छा लगता है जैसे अपने का प्यार है चाहे समाज की हाँ गल करिए क्योंकि समाज ता ही चलता है चलो हाँ मिली जुली करी कोई काम जड़ा है से करते न कने बिना मिली जुली करी कोई काम जड़ा है से संभव नहीं है। तो श्रोताओं हमेशा अच्छा सोचा पॉजिटिव सोचा कने अपने समाज वास्ते अगर हाँ अच्छा सोचते न या अच्छे काम करते न ता ही यहाँ अपने समाज जो बेहतर बनाई पाते न ता ही यहाँ खुद भी खुशहाल रही पाते न कने यहाँ का जोड़ा समाज है से भी खुशहाल जड़े से रह पाते हैं। तो श्रोताओं तो सारे सुना देन माटी दी महक कार्यक्रम अपनी रेडियो दो शशि कने कने इस कार्यक्रम का जड़ा समय तुह तक रहा है से रहा है 2 से 3 बजे तक। तो सारे भी इस कार्यक्रम के सफर कने जुड़ी सकते जुड़ने वास्ते जड़ा हाँ दा नंबर है से तुह नोट करी लिया अगर नंबर तुह नहीं है क्योंकि नंबर तुह तक पुजेगा ता ही तो इस नंबर पर कॉल या टेक्स्ट मैसेज जड़ा है से करी सकते नंबर है 701-811-7091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा क्योंकि हर टाइम हाँ मोबाइल फ़ोन जो जड़े से ज़्यादा समय दिंदे न पर जालू कमे वाली गल हो तालू हाँ कुछ ना कुछ अपने जड़ा काम कारण से करना शुरू हो जाते न तो ज़रूर फ़ोन का ता ही यूज़ करा जालू तुह जो लगा था कि हाँ जो ज़रूरत है ज़रूरत के अनुसार हर चीज़ जड़े से अच्छी लगती है। तो थोड़ा दे आगे बढ़ते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देन सुनते न सा प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारी भी जरूर इसा फरमाइशा जो इंजॉय करा।

दर्शकों तो सारे सुनिया ही प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश। इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप दे माध्यम ने तिना दा नाम है रामकृष्ण जी कने से रहने वाले न कांगड़े ते तिना तक कहाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारे भी इंजॉय की थी। दर्शकों तो सारे जो ही पता है कि कल दा जिहड़ा है यहाँ जो पता नहीं है कि जिंदगी च कल जिहड़ा है आने वाला जिहड़ा कल है तो इस क्या आना है सियाहां वास्ते बेहतर है या क्या जिहड़ा है कल दा कुछ जो भी पता नहीं है कि क्या जिहड़ा है होना है। तो कल पर अगर अहां हर चीज़ रख देन कल पर सोचना शुरू कर देन तो कुछ ना कुछ अहां अजकड़े दिन जो जिहड़ा है बेहतर तरीके ने नहीं जी पाते न। तो अहां दे जिहड़ा अगले श्रोता ने तिना कने कर देन गल बात। हेलो हेलो श्रोताओं कोल जिहड़ा है डिसकनैक्टिड हो तो जरूर अहां जिहड़ा गलबात करा दे थे कि अहां ज़्यादा समय तक कोई भी है चाहे इंसान हन कभी गुस्सा भी कर दे कभी जिहड़ा है प्यार भी कर दे कभी जिहड़ा है मतलब गुस्सा कने प्यार च बड़ा जिहड़ा अंतर है स्याहां जो दिखने जो मिलता है। पर अगर अहां कुसी ते माफ़ी मंगदे न या कोई भी नाराज़ है अहां उस जो माफ़ कर देन तो कुथी ना कुथी हर चीज़ जिहड़ा से प्यारे ने बनी आंदी है। कने अगर अहां हमेशा एक ही गल जो पकड़ी करी बैठ देन या ज़्यादा उस साइड सोच देन कने क्रोध जिहड़ा से कर देन या नाराज़ जिहड़ा से अहां रहन देन तो कुथी ना कुथी जिहड़ा नाराज़गी है ना स्याहां दी जिहड़ा गल है उस वह जो जिहड़ा से अगे जिहड़ा से खिंची करी ले आंदी है। कने अगर अहां प्यारे ने हर चीज़ रखते न या प्यार भावना एक ही दुए अंदर रखते न तो कुथी ना कुथी ये जिहड़ा प्यार भावना है स्याहां जो एक ही दुए ने हमेशा जोड़ी करी रखते न तो प्यार भावना होना भी जरूरी है। कने प्यार भावना ने ही हर काम जिहड़ा से अच्छा लगता है चाहे से परिवार की गल करना चाहे रिश्तों की गल करना क्योंकि रिश्तों की अगर अहां गल करिए तो कुथी ना कुथी चाहे रिश्ते न प्यार भावना जिहड़ा से अजकने दौर च अहां जो दिखने जो जिहड़ा से नहीं मिला दी हर कोई अपना जिहड़ा फायदा है से दिखा दा या अपना फायदा दिखी करी अहां जिहड़ा से चला दे न। अगर अहां अपना फायदा दिख दे न तो अहां ना परिवार कने खुश रही पाते न कने अहां हमेशा जिहड़ा से अपना ही दिखते न। कने अगर अहां सोची समझी करी चलते न या अपने माता पिता दे बारे च सोचते न या तिना दा सोचते न कि तिना अहां वास्ते कितना ज़्यादा संघर्ष किया कितनी ज़्यादा जिहड़ा मेहनत है से अहां वास्ते करा दे न तो कुछ ना कुछ अहां दे जिहड़ा सोच विचार हैं से जरूर बदली आते न। कने अगर तुहां ऐसी सोच विचार रखते न तो बड़ी अच्छी गल है क्योंकि जिहड़ा माता पिता न तिना ते जिहड़ा बड़ा गुरु है से कोई भी नहीं है तो हमेशा अपने माता पिता का जिहड़ा ख्याल है से जरूर रखा कने तिना दा मान सम्मान भी जरूर जिहड़ा है से करा चाहे से अहां दे बुजुर्ग हैं बुजुर्गों का मान सम्मान करना भी अहां वास्ते बड़ा ज़्यादा जरूरी है। पर मोबाइल फोन की दुनिया जहाँ इतना ज़्यादा खोई हो ना कि अहाँ कुथी ना कुथी अपने का जिहड़ा मान सम्मान करना भी जरूर जिहड़ा से भूली हो ना या बड़िया करना है गल किन्ना करनी है या किस प्रकार इन्हों का मान सम्मान करना है से अहाँ सब कुछ जिहड़ा से भूली चुके हो ना। अहाँ हमेशा ये सोची कर चलते ना कि मोबाइल फोन जिहड़ा से अहाँ है तो अहाँ सब कुछ है तो मोबाइल फोन ही सब कुछ अहाँ वास्ते नहीं है फैमिली का जिहड़ा साथ है से होना भी अहाँ वास्ते बड़ा ज़्यादा जरूरी है। कने अहाँ वास्ते अगर अहाँ दे गीत संगीत तो तक कहाँ पहुँचाएंगे न तो थोड़ा जहा कार्यक्रम च जिहड़ा रौनक वाला माहौल है से बनी आंदा है तो फिर ते अहाँ अपने कार्यक्रम का जिहड़ा माहौल है से थोड़ा जहा चेंज कर देना कने रौनक जिहड़ा है से जरूर लगा देना।

मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तुहा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहा सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो तो शशि करने। इस कार्यक्रम दा जिहड़ा सफर है से तुहा तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक। तो कार्यक्रम दा जिहड़ा समय है स्याहां जोन बोला दा कि तुहा अनुमति जिहड़ा है से जरूर ले लिया। अनुमति भी जरूर लैनी है कने जितने भी श्रोता जड़े न इस कार्यक्रम कने जुड़े थे कने कार्यक्रम जड़े से सुना दे थे। तो हाँ हमेशा अपना ख्याल भी रखा कने अपने दा जड़ा ख्याल है सभी जरूर रखा कने अपना जड़ा रेडियो गुंजन धर्मशाला है से गुनगुनाते रहा। जल वहाँ रेडियो गुंजन धर्मशाला कने या रेडियो गुंजन धर्मशाला तुह सुनते रहते न तो जड़ा मन है सभी लगे रहा। मन लगाने वास्ते हाँ हमेशा कुछ ना कुछ जड़ा ऐसे करते रहते हैं न।

करना भी ज़रूरी है, क्योंकि खाली दिमाग जेड़ा से शैतान का घर होंदा है। तो हमेशा खुश रहा करें, हंसते रहा करें, अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जेड़ा से गुनगुनाते रहा करें, अपनी रेडियो दो शशि जुदेया अनुमति।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC A+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 701-8170-1811-170-91। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: धरती हमारी माँ है, लेकिन आज वो घायल हो रही है। हर दिन कटते पेड़, सूखती नदियाँ और बढ़ता प्रदूषण हमें चेतावनी दे रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियाँ सांस लेने के लिए भी तरस जाएंगी। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाएं, क्योंकि साफ हवा, मीठा पानी और हरियाली ही असली धन है। पर्यावरण बचाना मतलब जीवन बचाना।
1: बंटी, बंटी,
2: बंटी,
1: बंटी, बंटी, बंटी, क्या हो गया तुम्हें? ये रोज रोज क्या?
3: पापा आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो मुझे बहुत डर लगता है।
1: सॉरी बंटी, अब से पापा हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। प्रॉमिस।
3: गॉड प्रॉमिस।
1: गॉड प्रॉमिस।
4: सीट बेल्ट ना पहनने से नुकसान आपसे ज्यादा आपके अपनों का हो सकता है, तो गाड़ी में बैठते ही खुद से और सबसे पूछें, पहनी क्या?
5: क्या आपके पार्षद ने साल में दो बार वार्ड सभा का आयोजन किया है?
6: वार्ड सभा, आपका वार्ड, आपकी आवाज।
5: नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुना था ताकि वे उनके निर्देशों के अनुसार काम करें, लेकिन अफसोस रुचिका, ये सेवक से मालिक बन बैठे।
6: क्या आपके पार्षद ने पिछले कार्यकाल में नियमित वार्ड सभा की?
5: क्या उन्होंने आपकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुना?
6: क्या उन्होंने चुनाव के समय किए गए वादे पूरे किए?
5: क्या वह एक सेवक की तरह काम करते हैं या एक शासक की तरह?
6: सावधान, अगर वार्ड सभाओं की उपेक्षा की गई है तो समझ लीजिए कि उन सेवकों ने नागरिकों की आवाज और उनकी पसंद को कुचल दिया है।
5: आपका एक वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके वार्ड और धर्मशाला नगर का भविष्य है।
6: अपना अधिकार पहचानो,
5: सही प्रतिनिधि चुनो,
6: सेवक चुने, मालिक नहीं। न भूलेंगे आवाज अपनी, न भूलेंगे अधिकार। आपका वार्ड, आपकी जिम्मेदारी।
7: कहते हैं लड़कियां दिमाग से नहीं दिल से काम लेती हैं। हंसी तो फंसी, और इनकी ना में भी हाँ होती है। हे,
8: मेरी ना का मतलब सिर्फ ना है, जस्ट फ्रेंड्स।
9: ना कहना आसान नहीं पर जरूरी है। HIV एड्स का चांस ना लें।
8: जवान हूँ, नादान नहीं।
10: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
11: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
10: बात तो सही है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने, नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: ना एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ छोड़ दो आजकल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाएं, क्योंकि साफ हवा, मीठा पानी और हरियाली ही असली धन है। पर्यावरण बचाना मतलब जीवन बचाना।
1: बंटी, बंटी,
2: बंटी,
1: बंटी, बंटी, बंटी, क्या हो गया तुम्हें? ये रोज़ क्या?
3: पापा, आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो मुझे बहुत डर लगता है।
1: सॉरी बंटी, आपसे पापा हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, प्रॉमिस।
3: गॉड प्रॉमिस।
1: गॉड प्रॉमिस।
4: सीट बेल्ट ना पहनने से नुकसान आपसे ज्यादा आपके अपनों का हो सकता है, तो गाड़ी में बैठते ही खुद से और सबसे पूछें, पहनी क्या?
5: क्या आपके पार्षद ने साल में दो बार वार्ड सभा का आयोजन किया है?
6: वार्ड सभा, आपका वार्ड, आपकी आवाज।
5: नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुना था ताकि वे उनके निर्देशों के अनुसार काम करें, लेकिन अफसोस रुचिका, ये सेवक से मालिक बन बैठे।
6: क्या आपके पार्षद ने पिछले कार्यकाल में नियमित वार्ड सभा की?
5: क्या उन्होंने आपकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुना?
6: क्या उन्होंने चुनाव के समय किए गए वादे पूरे किए?
5: क्या वह एक सेवक की तरह काम करते हैं या एक शासक की तरह?
6: सावधान, अगर वार्ड सभाओं की उपेक्षा की गई है तो समझ लीजिए कि उन सेवकों ने नागरिकों की आवाज और उनकी पसंद को कुचल दिया है।
5: आपका एक वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके वार्ड और धर्मशाला नगर का भविष्य है।
6: अपना अधिकार पहचानो,
5: सही प्रतिनिधि चुनो,
6: सेवक चुने, मालिक नहीं। न भूलेंगे आवाज अपनी, न भूलेंगे अधिकार। आपका वार्ड, आपकी जिम्मेदारी।
7: कहते हैं लड़कियां दिमाग से नहीं दिल से काम लेती हैं। हंसी तो फंसी, और इनकी ना में भी हाँ होती है। हे,
8: मेरी ना का मतलब सिर्फ ना है, जस्ट फ्रेंड्स।
9: ना कहना आसान नहीं पर जरूरी है। HIV एड्स का चांस ना लें।
8: जवान हूँ, नादान नहीं।
10: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
11: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
10: बात तो सही है।

नमस्कार श्रोताओं, तुसु सभीओ मेरा प्यार भरा नमस्ते हा। हूँ सचिन कपूर हा, कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर हुआ हा। सभी होने आले रा तहे दिल तो स्वागत करनो हा, अभिनंदन करनो हा। कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा मंच तो सभी इस समय ट्यून कर रहा है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। तक देन श्रोताओं तो है सब उम्मीद करनो सब खरे भुने राजे बाजे भुने। चलिए जी कार्यक्रम मंच सभी पहले गीत हूं लेना चाह तो तुम भी कुछ दे दे वालू कर दे कि गीत हूं लेंदे ने। लेकिन चलिए श्रोतो अगर चाह हा ना तो फिर चाह जो मकान न चींदा और चाह जो चाई होगी कि असो हूं न चींदा है ना। तो सभी भी चाह कि पहले गीत हूं ले ताइए आगाज कर देन कार्यक्रम रहा इस गीता सोगे।

बहुत आनंद आप उन सभी जो गीत सुनने व श्रोतों तो सभी ट्यून कर रहे समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम सचिन कपूर सो की बिल्कुल लाइव फोनो कर देने अपने अपने वीडियो सेट मा हिंदी अपनी गप्पा आइए जी कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं श्रोतों आज असू गल बात करने हाँ बुजुर्ग रे बारे अंदर की आखिरकार बुजुर्ग रा ख्याल किया सो असू की करे रखना हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है बड़ा ज्यादा जरूरी है श्रोतों की बुजुर्ग रा ख्याल किया सो है की करे रखना है ना सिर्फ तीनों त्राई टाइम मेरी रोटी देना या त्राई टाइम मेरा खाना दीना ही तैयारी सेवा नहीं है शोतो और भी बहुत चीज अगे ने सो है कर सकते हैं अपने बुजुर्ग वास्ते बशर्ते अगर करना चाहता अगर ना करना चाहता फिर क्या बोले सकते है ना और दिल मा इच्छा बुने चिंदिया सो जज्बात बुने चिंदे सो संस्कार बुने चिंदे तो सब काम किया सो बुझ गंदा टाइम ना लगो या टाइम नहीं है ये तो सिर्फ एक बहाना है शोतो समय सभी ले 24 घंटे रहे बंदा सिर्फ जो इम्पोर्टेंट ही इंदे घर अंदर तिन्या वास्ते समय कढ़ना इंदा दायित्व और सु जरूरी भी हा तो चलिए दस ले जरूर लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में हुन दिन पहले गीत

तशोतों आत्मों के फिर स्वागत है सभी वह गीतथों बाद बुजुर्गा रिया है गल बात लो रे था बुजुर्गा भी देखभाल करना त्यारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो प्राथमिकता देना है सभी पहले था त्यारा मानसिक स्वास्थ्य की ना सो हेरना है त्यारा शारीरिक स्वास्थ्य की ना सो हेरना है और इतियो सब थो पहले इम्पोर्टेंस देना किया सोइंदा दायित्व बनता है शतो तिन्यो सक्रिय और फिट रहने वास्ते किया सो तिन्यो प्रोत्साहित करना तिन्यो मोटिवेट करना ये इंदा फर्ज बनता है शतो नियमित स्वास्थ्य जांच कराना भी इंदा ही फर्ज है तिन्या ना बलना सो की असु रेगुलर स्वास्थ्य जांच वास्ते की असु बच्चा लेकर चल या फलाने लेकर चल ए इंदा फर्ज बनदा कि तिन्यो है लेकर गान उचित पोषण दीन तिन्यो शतो सामाजिक रूप थो सक्रिय रखना और त्यारी व्यक्तिगत जागरूकता जो समझना और तिन्या मंच समझ बनाना शतो तिन्यो अंडरस्टैंड करना ये भी सिर्फ और सिर्फ इंदा ही दायित्व है ना कि त्यारा कि सो बल ले आंसू करना इस भाड़ा मत बैठा शो तो फिलहाल कार्यक्रम जो है बढ़ेंदे नौर तुम सभी जो हणंदे ने गीत

कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत है। आप मौके फिर ये सब भी होने वाले रहा तो सब मैसेज कर सकते हैं 1408887091 पर। फिलहाल कार्यक्रम जो बढ़ंदन हगो और बुजुर्ग रिया है गलबात लौ रहे थे श्रोताओं, तो चलिए थोड़ा करे और इस टॉपिक जो हगो बढ़ंदन। सो बुजुर्ग सच में बहुत दिल थो आशीर्वाद दें, दिल थो खुश बुंदन अगर त्यार रहते है, तीनो टाइम रहते है नुआई दें, टाइम रे त्यार कपड़े धोई दें, टाइम रे तीनो खान पान टाइम वे तीनो अगर तुसो लगता कि बुजुर्ग के न सो थोड़ी करी एक्सरसाइज करी सकते हैं तो त्यार एक्सरसाइज कराई करे, तीनो शो तो धुप्पा बखाली करे भी कजो की धुप भी किया सो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुंदे सीजन वाइज, तो इस सब चीजा का ख्याल किया सो रखना इनका दायित्व इनका कर्तव्य महत्वपूर्ण अंग हा बुजुर्ग श्रोताओं इनके परिवार मंच है ना जी। ता शारीरिक देखभाल की कर रखने शो तो सोचो कर दिन ता रोजाना तीनो व्यायाम करा योग करा, बुजुर्गा जो व्यायाम और योग वास्ते की है सो प्रोत्साहित करा, तीनो सोगी करा इवन की एक्सरसाइज है ना, और तीनो फिट रहने वास्ते कि सो बल्ला शो तो है ना बीमारी थो दूर सुस्ता ही रह सकते हैं जहने एक्सरसाइज कर ले, जहने सो अच्छा फल फ्रूट खा ले, जहने सो शो तो पूरे तरीके हो गए कि सो योगा कर ले व्यायाम कर ले थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं तो सो कर ले, तो सो बीमारी तो दूर रह सकते हैं। बहरहाल चल दें और कार्यक्रम में हूँ देने गीत।

कार्यक्रम सचिन कपूर सो की हूँ गर्दन तो है हिंदी अपनी गपा हक मुके फिर बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है सभी हुने वाले रा सभी श्रोता गणरा और सचिन कपूर रा कार्यक्रम हिंदी अपनी गपा हूँ गर्दन और आज है कार्यक्रम में श्रोताओं टॉपिक लियो रहा बुजुर्गारी देखभाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेरा बुजुर्ग वास्ते अच्छा और ताजा खाना की है सो तीनों खुआना चिंता है ये ना कि बात करनी रोटी बच रही है सो सेकी करी देते जी काम निपटाई लो कि कर खदाम लग रही और बुजुर्ग ना खंदे था ब्यागनी रोटी है या ब्यागना कुछ प्यूरा बात सब्जी तो सो सेकी करती देता है ना बुजुर्ग का वास्ते खास कर सो तो तुम्हें अपू तो कर लिया कोई इशू नहीं को तुम्हें डाइजेस्ट कर सकते तो है कम करू कर देन बुजुर्ग बेचारे आग जगह बिखरे बंदे है ना तो जो कि तीन सारी उम्र तक मेहनत कर रहे बंदे सो तो अच्छा खान पीन देना की है सो इनका दायित्व बनता है प्रोटीन युक्त संतुलित आहार तीनों दिन छोतों और फास्ट फूड तो वैसे बुजुर्ग इन देर देने ने और तुसु भी लात ना लोआनी बुजुर्गो है ना कई सियाने इन दे बोलते कि आन ले इन दे है तो खाई लेते ना है तो ना खाना फास्ट फूड बिल्कुल ना खाना और प्रदूषण तो बचे करे रहे ना ज्यादा प्रदूषित जगह के सो बुजुर्ग जो ना ले करे गाना छोतों स्वास्थ्य जाँच के सो नियमित रूप थो डॉक्टर थो स्वास्थ्य जाँच करवाओ करा छोतों उचित समय में किया सो तीनों दवाई किया सो दिच्छू करा और रेगुलर रूटीन चेकअप किया सो बुजुर्ग कराना मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहरहाल चल दिन थोड़ा करी और हगो और तो है हुनु कर दिन कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा हर्चे सचिन कपूर सोगी।

सामुदायिक वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है जब ये ट्यून कर रहा रहा हूँ सचिन कपूर रातुंद अपना आरजे वेड़ी जो की हया कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदन श्रोतों और मानसिक और सामाजिक देखभाल रे बारे में भी गल बात कर लेंदन सक्रिय जीवन श्रोतों तिया सक्रिय और व्यस्त रहने वास्ते की आ सो प्रोत्साहित करना है ना कहो की ये मानसिक स्वास्थ्य जो की आ सो बढ़ावा दिंदा हा अगर सो बुजुर्ग इंदा व्यस्त रहते जो सो काम कर सकते न मतलब है ना तिया सो अगर काम कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी गल है तिहारा मानसिक स्वास्थ्य के इतों ठीक रहता है सोतों शरीर भी किया सो थोड़ा बहुत फिट रहता है। सामाजिक जुड़ाव बहुत जरूरी है बुजुर्ग वास्ते अकेलापन जो काम करना है बुजुर्ग रे भावनात्मक भलाई वे वास्ते की तीनों परिवार और दोस्त हो गए किया सो जोड़ी करी रखना है। कोई सियाना के इन घर है सोतों सो अगर तुसो लगता की अकेला फील करू करता तो तस्यो अपू होगी जोड़ी करी रखा या फिर आस पड़ोस में कोई और सियाने इन तीनों आपस में किया गलबात तैयारी भुआ इस गल्ला रे खास ख्याल रखना अगर सो ना गलबात करने लायक ही या ना इन्हें गाने लाइक ने तो है किया सो अपने बुजुर्ग होगे लगातार संपर्क में रहे तीनों अकेलापन किया सो फील मत कराश हो तो कार्यक्रम जो थोड़ी करी और हगो बढ़ देन और हुंदे ने प्यारे दे गीत।

शतों बहुत मजे चुकरदा गीता हुने वा, लेकिन जो आज का टॉपिक है वे बहुत मजेदार है। मेवे ता दिल होगी लगुरा ये टॉपिक है शतों वाके मैं कजो की जो बुजुर्ग सो इंदी पहचान हिन शतों बुजुर्ग वास्ते मानसिक शांति भी बहुत जरूरी है ना। मानसिक शांति की है शतों सो भी बहुत जरूरी है बुजुर्ग वास्ते। सो अपने मन री शांति होगी के ना सो रहन इट्स सो इम्पोर्टेंट है ना। घर अंदर कला कलेश की सो ना भूना चाहते हा। अप्पू मियाँ बीबी भी लड़ाई है तो सो इंदे बुजुर्ग तक न गाना चाहते हैं, या बच्चे भी लड़ाई है तो सो बुजुर्ग तक न गाना चाहते हैं। तिन्यो जितना हो सकता तूना मानसिक स्वास्थ्य के सो त्यारा ठीक रहे तिन्यो या एर और रिटेंशन आ गया न सो ना भून सो तो है गल्ला विशेष ध्यान किया सो जरूर रखना तो है सब। आइए कार्यक्रम जो है बढ़ देन और कार्यक्रम में लेकर चल दें तो सब बीजो इस प्यारे देगी तारी किनारी।

श्रोता भैया कार्यक्रम इस समय तो हुण करदे ने सचिन कपूर सोगी इंदी अपनी गप्पा। तो श्रोता अपने घर में बुजुर्ग की देखभाल जरूर करन, है ना। घर में बुजुर्ग की देखभाल करदे ने अगर तो है श्रोता तो सब घर घर ना मंदिर बनी सकता है और मंदिर बनी गंदा है जहाँ तो वह बुजुर्ग की तड़ी देखभाल करदे ने और तीनों बढ़िया तरीके होगी कि सो रखते हैं इन श्रोता, है ना जी। इन बुजुर्ग जो कि सो समय समय में मैं दसो दुआ दिया।

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। नीट यूजी की रद्द हुई परीक्षा, 21 जून को अगले साल से होगी ऑनलाइन परीक्षा। भारत यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई सहित 5 अहम समझौते। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए हुए महंगे। सीबीएसई स्कूलों में छात्र एनरोलमेंट की होगी जांच, सरकार ने मांगी रिपोर्ट। सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने में भूमिका निभाते हैं गुरुकुल। अब समाचार विस्तार से। अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा

ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। उनका मानना है कि 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। हम नहीं चाहते थे कि कोई गलत कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाए, इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। अब ये परीक्षा रविवार 21 जून को होगी। 7 मई को गड़बड़ी का पता चला था, एनटीए ने सरकार को बताया, फिर 12 मई को री एग्जाम का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात का एक छोटा सा दौरा किया। ये दौरा छोटा इसलिए है क्योंकि पीएम सिर्फ 4 घंटे ही यूएई में रुके। अबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी के यूएई के इस दौरे पर भारत रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 5 अहम समझौते किए गए। देश में शुक्रवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया है। कंपनियों ने अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी लागू कर दी है। दिल्ली से मुंबई तक और लखनऊ से श्रीनगर तक लोगों को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में छात्र अनुपात के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सबसे पहले सीबीएसई स्कूलों में छात्र एनरोलमेंट की जांच की जाएगी। सरकार ने स्कूल शिक्षा निदेशालय से एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा है। प्रदेश के हर जिले से सीबीएसई स्कूलों में कितने छात्रों ने दाखिला लिया, किन स्कूलों की कक्षाओं में सरप्लस दाखिले हो चुके हैं, ये सब आंकड़ा सरकार ने मांगा है। इसके अलावा अब ऐसे सीबीएसई स्कूलों की भी जानकारी मांगी गई है जहां पर छात्रों के दाखिले ज्यादा नहीं हुए हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत थिवरी माथो जिला कुल्लू के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। भुंतर हवाई अड्डे पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त सचिव एवं परियोजना निदेशक निशांत ठाकुर जी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बहुउद्देशीय भवन के बैठक हॉल में कुल्लू में आयोजित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश में कमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं की 10 श्रेणियों को 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली सेस लगाया गया है। इनको अभी तक टैरिफ के अनुसार 6 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट बिजली का बिल आ रहा था, जिन्हें अब 7 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट के दर से बिल आएगा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं अब ऊर्जा विभाग ने ये सेस लगाया है, जिसकी उगाही बिजली के बिल में बिजली बोर्ड वसूल करेगा। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए नई दिल्ली आए ईरान के विदेश मंत्री शुक्रवार को वहां पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के संबंध में हमारी भी वही इच्छा है कि इसे पूरी तरह से फिर से खोल दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जहाज वहां से गुजर सकते हैं, सिवाय उन देशों के जहाजों के जो हमारे साथ युद्ध की स्थिति में हैं और हमारे विरुद्ध लड़ रहे हैं। हालांकि परिस्थितियों के कारण ईरानी सेना के साथ समन्वय जरूरी है। भारत के कई जहाजों को भी ईरान ने सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को बेंगलुरु में वेद आगम संस्कृत महापाठशाला श्री श्री गुरुकुलम वैदिक हेरिटेज परिसर का दौरा किया। ये संस्थान वेद विज्ञान महाविद्यापीठ आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कार्यक्रम में गुरुकुल के विद्यार्थियों एवं विद्वानों से संवाद किया। वो भारत की प्राचीन वैदिक परंपराओं को संरक्षित एवं विकसित करने के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रवासों की सराहना की। उन्होंने श्री श्री रविशंकर तथा आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की इस अद्वितीय पारंपरिक शिक्षण केंद्र की स्थापना एवं निरंतर संचालन के लिए प्रशंसा की। प्रदेश में शहरी निकायों के लिए चुनावी शोरगुल थम गया। शुक्रवार शाम 3 बजे के बाद सभी शहरी निकायों में चुनाव प्रचार रोक दिया गया। अब केवल डोर टू डोर प्रचार होगा, जिसके बाद रविवार को 51 शहरी निकायों में मतदान हो जाएगा। इसके साथ शहरी क्षेत्रों में अगले 48 घंटों तक ड्राई डे रहेगा। इस दौरान शराब ठेके और बियर बार नहीं खोले जा सकेंगे। इन्हें 17 मई की दोपहर 3 बजे तक बंद रखना होगा।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में लगे कर्मचारियों के मताधिकार पर भी संकट है। यदि चुनाव ड्यूटी पर लगा कर्मचारी उसी ब्लॉक में तैनात है जहां का वो रहने वाला है तो उसे वोट डालने का अधिकार मिलेगा। यदि वो अपने ब्लॉक से बाहर ड्यूटी पर तैनात है तो फिर मताधिकार का प्रयोग वो नहीं कर पाएगा। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे पंचायत और शहरी निकाय चुनाव इस बार पूरी तरह हाईटेक अंदाज में नजर आएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने पहली बार जिला परिषद, बीडीसी और नगर निगम चुनावों की मतगणना की लाइव वेबकास्टिंग कराने का फैसला लिया है। इसके जरिए राज्य चुनाव आयोग और जिला प्रशासन मतगणना केंद्रों की पल पल की गतिविधियों पर सीधी नजर रख सकेगा। केंद्र के मोदी सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में स्पष्ट किया है कि अग्निवीर नियमित सैनिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे में युद्ध या किसी सैन्य कार्रवाई के दौरान उनकी मृत्यु होने पर उनके परिवार को सामान्य सैनिकों की तरह पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जून में होने वाली पीजी परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। विद्यार्थी 20 मई तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्री पीजी, डिप्लोमा और एड ऑन कोर्स के साथ साथ LLB, MTTM, VHM, MTech, BLIV और MLIV जैसे प्रोफेशनल और अकादमिक कोर्सों की परीक्षाएं जून महीने में आयोजित की जाएंगी। IPL का रोमांच इन दिनों धौलाधार की वादियों में देखने को मिल रहा है। 17 मई को पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले बड़े मुकाबले के लिए RCB की टीम शुक्रवार को धर्मशाला पहुंच गई है। इस हाई वोल्टेज मैच में प्लेऑफ की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए मौजूदा IPL सीजन की टेबल टॉपर RCB के सामने पंजाब किंग्स होंगे। पंजाब के प्लेऑफ में बने रहने के लिए आगामी दोनों ही मुकाबले RCB व सनराइजर्स हैदराबाद से जीतने होंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि DLED कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 जो पूर्व में 31 मई को आयोजित किया जाना निर्धारित था प्रशासनिक कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है। अब उक्त परीक्षा 31 मई के स्थान पर 17 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा से संबंधित अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। डॉक्टर शर्मा ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे परीक्षा से संबंधित नवीनतम जानकारी एवं अन्य आवश्यक निर्देशों के लिए समय समय पर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। उच्च शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 के तहत प्रदेश के सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों, संस्कृत कॉलेजों, SCERT सोलन तथा GCTE धर्मशाला को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान बनाने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी संस्थानों को TOFEI के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रमाणन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने को कहा है। अब एक नजर मौसम पे। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से करवट बदल रहा है। राज्य में कई दिनों तक ठंडे मौसम, बारिश और बर्फबारी के बाद अब फिर से गर्मी का दौर शुरू हो रहा है। 17 मई को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। 18 मई से प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहने के आसार हैं। विभाग के अनुसार 18 से 21 मई तक बारिश की संभावना कम है और लगातार धूप खिलने से तापमान में

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओ, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओ, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओ, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओं, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते, आदाब, सलाम और सत श्री अकाल। जी हाँ श्रोताओं, पहुँच चुके हैं हम रेडियो गुंजन में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और गीत संगीत। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं प्यारे से गीत के साथ, तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं लेकर ढेर सारी जानकारियां, तो थोड़ा सा स्थानीय जानकारियों की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान दिवस 17 मई को रखा गया है। ये अवकाश संबंधित नगर निगम क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगमों, शिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा दुकानों तथा वाणिज्यिक संस्थाओं पर लागू रहेगा। अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा विनय कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिला कांगड़ा के अंतर्गत नगर निगम धर्मशाला, नगर निगम पालमपुर, नगर परिषद कांगड़ा, नगर परिषद नूरपुर, नगर परिषद नगरोटा भगवां, नगर परिषद देहरा, नगर परिषद ज्वालामुखी तथा नगर पंचायत शाहपुर के चुनाव प्रस्तावित हैं और अधिसूचना के अनुसार इन क्षेत्रों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया है कि ऐसे कर्मचारियों जो राज्य के अन्य स्थानों पर कार्यरत है लेकिन संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में के मतदाता हैं, उन्हें मतदान करने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। तो श्रोताओ, ये तो थी आज की जानकारियाँ। आज की जानकारियाँ और भी हम आपके साथ साझा करेंगे, फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे तो बढ़ना पड़ेगा। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी बातचीत जो है पूरी नहीं हो पाएगी। तो आज श्रोताओं हम बात करेंगे पौष्टिक आहार के बारे में कि किस तरह से पौष्टिक आहार लेकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। अक्सर हम लोग जो हैं, आजकल का ट्रेंड ऐसा है कि हर कोई अपने वजन को नियंत्रित करने में लगा रहता है। वैसे सही बात है, श्रोताओं बताएं तो हमारे डॉक्टर की भी यही राय रहती है कि वजन को कम करो, क्योंकि ज़्यादातर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के कभी घुटनों में दर्द, कभी पैरों में दर्द और बहुत सारी मोटापे के साथ समस्याएं आती हैं, ऐसा तो आप सभी जानते हैं। और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर का यही सवाल होता है कि अपने वेट को कम करो। जब हम वेट को कम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घुटनों पर भी दबाव कम पड़ता है और दर्द भी कम होती है। इसलिए वज़न को नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। योग, एक्सरसाइज, वॉक और खाने पीने का परहेज करके हम अपने आप को स्वस्थ व तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो पौष्टिक आहार की श्रोताओं बात कर रहे थे। शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की भी कई बार कमी हो जाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म धीरे बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप वजन घटाने की बजाय बढ़ भी जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में ऐसे पोषक तत्व शामिल करें जो शरीर को संतुलित रखें और वज़न घटाने में मदद करें। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में छोटा सा विराम लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

इस प्यारे से गीत के बाद श्रोताओ कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और इसी स्वागत के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारी बात पौष्टिक आहार के बारे में हो रही थी। श्रोताओ, सूजन और वाटर रिटेंशन से राहत की बात करें तो केला, आलू, मशरूम, ब्रोकली, टमाटर, खीरा, स्ट्रॉबेरी, अनार, संतरे का जूस, पत्तेदार सब्जियां, ये सभी पोटाशियम के अच्छे स्रोत माने गए हैं। पोटाशियम की कमी से शरीर में सूजन, पानी रुकना, वजन बढ़ना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ये मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है, इससे कैलोरी तेजी से बर्न होती है। तो श्रोताओ कार्यक्रम में हम और भी पौष्टिक आहार से संबंधित जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा कार्यक्रम में फिर से रुकते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

चलो इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। पौष्टिक आहार की हम बात कर रहे थे, तो पौष्टिक आहार में कैल्शियम भी बेहद ज़रूरी होता है। दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल और टोफू कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत माने गए हैं। कैल्शियम और विटामिन डी शरीर के वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। ये फैट को तेज़ी से बर्न करता है और लंबे समय तक इसे पेट भर रहने का एहसास भी होता है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियाँ और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम के ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। आपका वोट, आपका शहर, आपका भविष्य।
1: क्या आप जानते हैं कि धर्मशाला के विकास में आपकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना कानूनन अनिवार्य है? नगर निगम के नियमों के अनुसार
0: वर्ष में 2 बार वार्ड सभा आयोजित करना अनिवार्य है। ये एक ऐसा लोकतांत्रिक मंच है जहां आप अपने वार्ड की समस्याओं और मुद्दों को सीधा उठा सकते हैं।
1: आपके सुझावों को ही वार्ड विकास योजना और नगर निगम विकास योजना का आधार बनाया जाता है।
0: वार्ड सभा का आयोजन ना करना नागरिकों को विकास की मुख्य धारा से बाहर रखने के समान है।
1: जब आप वार्ड सभा में आते हैं तो आप केवल शिकायत नहीं करते बल्कि समाधान का हिस्सा बनते हैं।
0: भागीदारी आपकी, विकास हमारा उद्देश्य। अपनी समस्याओं को योजना का हिस्सा बनवाएं, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करें।
2: आइए मिलकर बनाएं एक बेहतर और विकसित धर्मशाला।
1: जागरूक बने और अपने हक के लिए आगे आए।
3: श्रोताओं, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में। और पौष्टिक आहार की बात कर रहे थे जिसे लेकर हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसमें आयरन जो है बहुत ज़रूरी होता है, थकान दूर करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। इसमें अंडे की जर्दी, सोया, अनार, तरबूज, अंजीर, किशमिश, खजूर, ये सभी आयरन से भरपूर होते हैं। आयरन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है जिससे थकान और सुस्ती बढ़ती है और एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता है और वजन घटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो श्रोता, रही बात पौष्टिक आहार की, जब तक हम पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तब तक हमारा शरीर जो है स्वस्थ नहीं रह पाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाने में हर वो चीज़ शामिल करें जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत है। तो फिलहाल इस समय हमें ज़रूरत है गीत संगीत सुनने की, तो बिल्कुल देरी न करते हुए कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ व तंदुरुस्त रहे। शरीर स्वस्थ होगा तो हम हर काम को भली भांति और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है जब हम शरीर की देखभाल करते हैं। हर काम श्रोताओं जीवन में बेहद ज़रूरी है। कामकाज के साथ साथ खाना पीना भी ज़रूरी है और ख़ुद को समय देना भी बेहद ज़रूरी है। खुद को समय देना हो तो उसकी देखभाल करनी हो तो उसके लिए हम एक्सरसाइज, योग, वॉक, हर चीज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा खान पान भी अच्छा होना चाहिए। खाने में दूध, कद्दू के बीज, मूँगफली और सिप्रोलिना अर्जिनिन के अच्छे स्रोत हैं। ये एक अमीनो एसिड है जो शरीर से फैट बर्न करने और मसल बढ़ाने में मदद करते हैं। मजबूत मांसपेशियां ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है जिससे वजन कम करने में आसानी मिलती है। तो श्रोता, कार्यक्रम में हम फिर से थोड़ा सा रुकते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

चलो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूँ श्रोताओ आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूँ इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें पौष्टिक आहार के ऊपर करते हैं। बहुत सारे खाने की ऐसी चीज़ें होती हैं श्रोता जो हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों को खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सोचकर खाना चाहिए कि हमारे शरीर को इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे अगर ड्राई फ्रूट की बात करें तो इसमें बादाम, अखरोट, काजू, चिया सीड्स, पालक, मछली, बीन्स और साबुत अनाज में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। ये शरीर में जमा फैट को रिलीज़ करने में प्रक्रिया को तेज़ करता है और इसकी कमी से नींद की समस्या, मांसपेशियों में ऐंठन और थकान हो सकती है। तो मैग्नीशियम भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो अपने शरीर को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ज़रूर लें ताकि हम स्वस्थ रहकर इस प्यारे से जीवन का आनंद लें। और हम सभी जानते हैं जब हम बीमार हो तो कुछ भी करने को मन नहीं करता है, ना अच्छा खाने को मन करता है, ना घूमने को मन करता है, ना अच्छा कपड़ा पहनने को मन करता है। और जब शरीर अच्छा होता है तो हर काम को करने को मन करता है। इसलिए श्रोताओं, जब भी आपको लगे कि हमें अच्छी चीज़ें लेनी है तो ज़रूर लें, क्योंकि अच्छा खान पान ही जीवन में बेहद ज़रूरी होता है। तो इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में और कुछ बातें हम आहार के ऊपर कर लेते हैं। क्यों ज़रूरी होता है संतुलित आहार, इसकी बात करें श्रोताओं, तो वज़न घटाने के लिए केवल कैलोरी कम करना ही पर्याप्त नहीं होता है। यदि शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो ये सेविंग मोड में चला जाता है, माफ़ कीजिएगा, स्विंग मूड में चला जाता है और फैट बर्न करने की बजाय उसे स्टोर करने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि डाइट में संतुलित आहार ज़रूर लें और जिसमें ज़रूरी होता है न्यूट्रिएंट्स और इन चीज़ों को भी शामिल करें। इसके साथ साथ हरी सब्जियों को ज़रूर अपने भोजन में शामिल करें और इसके साथ साथ ज़रूरी है विटामिन्स जो शरीर में फैट जमा होने से रोकते हैं और ख़ासकर लीवर के आसपास इसे वजन घटाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बातें थी हमारे आहार में पौष्टिक आहार लेने के बारे में, तो ज़रूर इन चीज़ों को आप आहार में शामिल करें। और फिलहाल हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं कार्यक्रम का ये गीत, आप जुड़े रहिए।

0: सुबह साई के 7 बजने को है और कार्यक्रम में समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का।
1: विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार

कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुँच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास नवाचार RDI निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तो क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। आपका वोट, आपका शहर, आपका भविष्य।
1: क्या आप जानते हैं कि धर्मशाला के विकास में आपकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना कानूनन अनिवार्य है? नगर निगम के नियमों के अनुसार
0: वर्ष में 2 बार वार्ड सभा आयोजित करना अनिवार्य है। ये एक ऐसा लोकतांत्रिक मंच है जहां आप अपने वार्ड की समस्याओं और मुद्दों को सीधा उठा सकते हैं।
1: आपके सुझावों को ही वार्ड विकास योजना और नगर निगम विकास योजना का आधार बनाया जाता है।
0: वार्ड सभा का आयोजन ना करना नागरिकों को विकास की मुख्य धारा से बाहर रखने के समान है।
1: जब आप वार्ड सभा में आते हैं तो आप केवल शिकायत नहीं करते बल्कि समाधान का हिस्सा बनते हैं।
0: भागीदारी आपकी, विकास हमारा उद्देश्य। अपनी समस्याओं को योजना का हिस्सा बनवाएं, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करें।
2: आइए मिलकर बनाएं एक बेहतर और विकसित धर्मशाला।
1: जागरूक बने और अपने हक के लिए आगे आएं।
3: शोधोई संतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज के दिन की बात करते हैं। श्रोतो, आज के दिन हमने मनाया है शनि जयंती। शनि जयंती एक हिंदू पर्व है जो श्री ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था और शनि देव हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले प्रमुख देवताओं में से एक है। शनि जन्म के संदर्भ में बहुत सारी कथाएं भी है। इनके अनुसार शनि सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र है। सूर्य देव का विवाह प्रजापति पक्ष के पुत्री संज्ञा से हुआ था। कुछ समय पश्चात उनकी 3 संतानों के रूप में मनु, यम और यमुना की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार कुछ समय तो संज्ञा ने सूर्य के साथ निर्वाह किया, परंतु संज्ञा सूर्य के तेज को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाई। उसके लिए सूर्य का तेज सहन कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। इसी वजह से संज्ञा अपनी छाया को पति सूर्य की सेवा में छोड़कर वहां से चली गई। कुछ समय बाद छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। तो श्रोताओ, शनि देव की आज हम बात करेंगे। हम भगवान शनि देव को बहुत मानते हैं क्योंकि बहुत सारे कष्टों से वो हमारा निवारण भी करते हैं। तो भक्ति भाव भी जीवन में बेहद ज़रूरी है। भक्ति के बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता है और एक भगवान ही तो है जहाँ जो है हर तरफ से हम हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन्हें कबूल करते हैं। तो और भी हम जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कैसी हूँ?

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम में हम बात शनिदेव महाराज की कर रहे थे। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि आज के दिन शनि मंत्रों पर पूजा अर्चना का विशेष कार्यक्रम था, और उसके साथ साथ भंडारे का भी आयोजन रहा है। और आज के दिन को हमने शनिदेव जयंती के रूप में मनाया है, और शनि जयंती के अवसर पर शनिदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शनि जयंती के दिन हम दान पुण्य पूजा पाठ शनि सम्मति सभी जो है जितना हमसे होता है वो करते हैं, ताकि शनिदेव हमारे कष्ट दूर करें। शनिदेव की निर्मित पूजा करने से भक्तों को चाहिए कि वे शनि जयंती के दिन जो है सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, और जो है नवग्रहों को नमस्कार करते हुए शनिदेव के लोहे की मूर्ति स्थापित करें, और सरसों का या तिल के तेल से स्नान करवाए, और साथ ही साथ मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। और पूजा के बाद दिन भर निराहार रहें और मंत्रों का जाप करें। साथ ही साथ तिल, उड़द दाल, काली मिर्च, मूंगफली का तेल, अचार, लौंग, तेजपत्ता, काले नमक का उपयोग करना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शनि के दान में ही जाने जाने वाली वस्तु में काले कपड़े, जामुन, काले उड़द, काले जूते, तिल, लोहे, तेल आदि वस्तुओं को शनि के निर्मित दान में दे सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी श्रोताओं आपके साथ साझा करने को है। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और फिर से सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने प्रदेश के सभी पात्र मतदाताओं से 17 मई 2026 को आयोजित होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। प्रदेश में यूएलवी चुनावों के लिए प्रचार अभियान आज समाप्त हो चुका है तथा कल धर्मशाला, सोलन, मंडी, पालमपुर नगर निगम सहित विभिन्न नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मतदान होगा। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ बनाने तथा शहरों तथा कस्बों के बेहतर नागरिक सुविधाएं तथा योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से जिम्मेदारी पूर्वक अपना मतदान का प्रयोग करने का आग्रह करते हुए कहा है कि मतदान केवल एक संवैधानिक अधिकार ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियां फिलहाल यहीं पर रोकते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और शनि जयंती के महत्व की थोड़ी सी बात करते हैं। इस दिन मुख्य शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। सुबह और शाम हम लोग माथा टेकने जरूर जाते हैं और भारत में स्थित मुख्य शनि मंदिरों में भक्त शनि देव से संबंधित पूजा पाठ करते हैं और शनि पीड़ा से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। शनि देव को काला या कृष्ण वर्ण का बताया जाता है, इसलिए उन्हें काला रंग अधिक प्रिय है। शनिदेव काले वस्त्रों से सुशोभित होते हैं और धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिदेव का जन्म जेठ मास की अमावस्या तिथि को हुआ था। जन्म के समय से ही शनि देव श्याम वर्ण, लंबे शरीर, बड़ी आंखों वाले और बड़े केश वाले थे। तो शनिदेव की पूजा की श्रोता बात करें तो इस दिन शनिदेव के विशेष पूजा का विधान रहता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्रों तथा का गुणगान किया जाता है और शनि हिंदू ज्योतिष में 9 मुख्य ग्रहों में से एक है। शनि अन्य ग्रहों की तुलना में धीमे चलते हैं, इसलिए उन्हें शनैश्चर भी कहा जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार शनि के जन्म के विषय में काफ़ी कुछ बताया गया है और ज्योतिष में शनि का प्रभाव का साफ संकेत मिलता है। शनि ग्रह वायु तत्व और पश्चिम दिशा के स्वामी हैं और शास्त्रों के अनुसार शनि जयंती पर उनका पूजा आराधना और अनुष्ठान करने से शनि देव विशिष्ट फल प्रदान करते हैं। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को फिर से थोड़ा सा रोक लेते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम में आगे आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ जानकारियों की। नगर तथा ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने आज यहाँ हिमाचल प्रदेश आवास तथा शहरी विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि प्राधिकरण की परियोजना का उद्देश्य लोगों को आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ प्रदेश के लिए राजस्व के नए स्रोत सृजन करता है। उन्होंने कहा है कि शहरीकरण की तीव्र गति की दृष्टिगत शहरी विकास हिमाचल के विकास को रणनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है। राज्य में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के तहत हिम चंडीगढ़, हिम पंचकुला और कांगड़ा वैली एयरोस्टी जैसे महत्वपूर्ण परियोजना के धरातल पर उतरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हिम चंडीगढ़ को साकार रूप प्रदान करने के लिए आपसी सहमति तथा लैंड पुलिंग के तहत भूमि का प्राधिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सिरसा नदी के तटीकरण के लिए विकास परियोजना तैयार की जा रही है। साथ ही साथ कहा है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने तथा राज्यों के बढ़ते शहरीकरण को दबाव को कम करने के लिए इस योजना को योजनाबद्ध सत्त विकास की दृष्टिगत भविष्य के अनुरूप शहरी केंद्रों में विकसित किया जाएगा। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ और जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शनि देव की हम बात कर रहे थे। शनि की दशा से पीड़ित लोगों को शनि जयंती के दिन उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे सुख की प्राप्ति होती है और पूरे साल हर शनिवार को दिन के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने और सरसों के तेल का दिया जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। न्याय के देवता हैं, योगी तपस्या में लीन तथा हमेशा दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। शनि ग्रह को न्याय का देवता कहा जाता है। ये जीवों को सभी कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनिदेव को सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा का पाठ करके, इसके साथ ही इस दिन शनि चालीसा का पाठ विशेष

प्रदान करता है। शनि देव का नाम या स्वरूप ध्यान में आते ही मनुष्य भयभीत अवश्य होता है, लेकिन कष्टतम समय में जब शनि देव से प्रार्थना करता है, उनका स्मरण करता है, तो शनि देव कष्टों से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। तो श्रोताओ, अपनी जानकारियों को हम देते हैं विराम और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: खुश हो तो इसी गीत के साथ कार्यक्रम समय हो गया है प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए कल होगा मतदान। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। मतदान को बताया जिम्मेदारी व गौरव का प्रतीक। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर भी गतिविधियां तेज। कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 17,643 प्रत्याशी मैदान में। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने सहब सोसाइटी के सफाई कर्मचारियों से की हड़ताल समाप्त करने की अपील। और धर्मशाला में कल RCB व पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा IPL का अहम मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कल प्रदेश में होने वाले शहरी निकाय चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पोलिंग पार्टियों को गंतव्य स्थानों पर भेज दिया गया है। शहरी निकायों को लेकर प्रदेश में 439 पदों के लिए 1,147 उम्मीदवार मैदान में है। नगर निगम के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं और मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा के बीच माना जा रहा है। नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए जा रहे। शहरी निकाय चुनाव में लगभग 3,80,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन नगर निगमों सहित प्रदेश के 51 शहरी निकायों के लिए कल सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि मतदान के दिन मतदाता के पास किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर किसान पासबुक, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसे 17 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाया जा सकता है। नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल मतदान खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी और शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगमों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव शहरों व कस्बों को बेहतर नागरिक सुविधाएं और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल ने कहा कि मतदान केवल संवैधानिक अधिकार ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि पहली बार मतदान करना राष्ट्र निर्माण के प्रति जिम्मेदारी और गौरव का प्रतीक है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी निकायों में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि चारों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी ने ईमानदार व कर्मठ प्रत्याशी उतारे हैं और सभी शहरी निकायों का संतुलित विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
2: चाहे वो मंडी है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो पालमपुर है, चाहे वो सोलन है, हर जगह में जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे, जिनको जिम्मेवारियां पार्टी की ओर से दी गई थी, हमने पूरी मजबूती से पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास किया है। हम शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने एक पूरा रोड मैप जो है वो जनता के बीच में रखा है कि किस तरीके से हम शहरी विकास के लिए कार्य करेंगे। उसमें चाहे पार्किंग्स का डेवलपमेंट होना है, हाइड्रोलिक पार्किंग्स का डेवलपमेंट होना है, सिवरेज सिस्टम का डेवलपमेंट होना है, और हमने हमेशा केंद्र से भी हिमाचल के, चाहे वो मेरे PWD से संबंधित मसले हैं, वैसे ही शहरी विकास में भी उसमें भी हमने बजट लाने का प्रयास किया।
1: दूसरी ओर प्रदेश भाजपा ने भी नगर निगम चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने शहरी निकायों में विकास कार्यों की अनदेखी की है और लोगों को झूठी गारंटियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि चारों नगर निगमों में भाजपा की जीत से विकास का नया दौर शुरू होगा और जनता को कांग्रेस सरकार की विफलताओं से मुक्ति मिलेगी। बिंदल ने कहा कि भाजपा की जीत के बाद नगर निगमों में पेयजल, पार्किंग, सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में मतदान को लेकर प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। जिले में धर्मशाला और पालमपुर नगर निगमों के अलावा अनेक नगर परिषदों व नगर पंचायतों में मतदान हो रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की पार्किंग या अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने जिला के सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है।
3: जो पोलिंग डे का टाइम है सुबह 7 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक पोलिंग का टाइम है। उसके बाद जो ईवीएम्स हैं वो ईवीएम्स को सील किया जाएगा और जो नगर निकाय में जो नगर निगम है उनको छोड़कर बाकी की काउंटिंग वहां पर जो तय काउंटिंग स्थल है वहां पर काउंटिंग की जाएगी। सारे जगह पोलिंग पार्टीज हमारी मूव कर चुकी हैं। सभी से समान रूप से अनुरोध है कि सब आए और अपने मत का प्रयोग करें।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनका कल नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने का कार्यक्रम है, जहां वे 18 मई को केरलम के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू का 19 मई को शिमला लौटने का कार्यक्रम है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नगर निगम सोलन में मतदान के लिए 38 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 14 मतदान केंद्रों का जिम्मा महिला कर्मचारियों को सौंपा गया है। शहर में 7 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई हैं। उन्होंने शहर के सभी लोगों से मतदान करने की अपील की है।
4: नगर निगम सोलन का चुनाव है, उसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसमें हमारे जो शहर में इस वक्त 38 पोलिंग बूथ्स बनेंगे, इस बार हमने 14 पोलिंग बूथ्स जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। ये प्रयत्न किया है कि महिलाओं को इस चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई जाए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए एडेक्वेट पुलिस पर्सनल डिप्लॉय किए गए हैं। और मैं सभी सोलन निवासियों से निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर अपने मतदान का प्रयोग करें और भारी संख्या में लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल कर मतदान अवश्य करें।
1: शहरी निकाय चुनावों के अलावा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर भी गतिविधियां जारी हैं। राज्य में इस बार 26, 28 और 31 मई को 3 चरणों में पंचायती राज चुनाव करवाए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सबसे अधिक 17,643 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उधर सिरमौर जिला में 28 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं और सरकार द्वारा इन्हें 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका वर्मा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिले में कुल 3,909 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
5: जिला परिषद में टोटल 53 कैंडिडेट में जो कंटेस्ट करेंगे, पंचायत समिति टोटल 36 प्रधानों के उसमें जाते हैं और 8 ब्लॉकों की जो टोटल कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो 826 हैं। जिला सिरमौर में इस बार 28 पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने निर्विरोध ग्राम पंचायत की सूची में ये जो शामिल हुई हैं।
1: शिमला शहर में सहब सोसाइटी से जुड़े सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे सफाई व्यवस्था पर असर पड़ा है। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने सफाई कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि चुनाव आचार संहिता के बाद 10% वेतन वृद्धि का फैसला लिया जाएगा और वे सफाई कर्मचारियों की सभी जायज समस्याओं को मुख्यमंत्री व शहरी विकास मंत्री से उठाएंगे।
6: किसी के बहकावे में आकर के आप ये चीजों को मत करिए, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है? गार्बेज जो कलेक्टर है उसका होता है। सफाई व्यवस्था का होना यहाँ बहुत जरूरी है। आप जल्द से जल्द इस हड़ताल को वापस करके इस तरह से वो करना, शिमला का नाम खराब करना कोई अच्छी बात नहीं है। नगर निगम के इतिहास में 30 लाख तक का इंश्योरेंस मैंने करवाया, जो शायद इन्होंने कभी मांग नहीं रखी थी मेरे पास। 7 डेज की छुट्टी हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दी। ईजीएम में जो कह रहे की 10% हमारी वृद्धि का, जो फैसला ईजीएम में होता है, हमारा भी कोड ऑफ कंडक्ट है। जल्द से जल्द में एक ही सिंगल उसको लेकर के जा सकता हूं, मैं ईजीएम करवाऊंगा।
1: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये दिवस मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इस मौके पर नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। जेपी नड्डा ने डेंगू के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में कल आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने आज जमकर अभ्यास किया। इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। अंक तालिका में आरसीबी 16 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी हुई है, वहीं पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है और प्ले ऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए उसे ये मैच जीतना जरूरी है। धर्मशाला में कल होने वाले नगर निगम चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने मैच देखने आने वाले क्रिकेट प्रेमियों के वाहनों के लिए अलग से वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए कल होगा मतदान। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। मतदान को बताया जिम्मेदारी व गौरव का प्रतीक। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर भी गतिविधियां तेज। कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 17,643 प्रत्याशी मैदान में। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने सहब सोसाइटी के सफाई कर्मचारियों से की हड़ताल समाप्त करने की अपील। और धर्मशाला में कल आरसीबी व पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा आईपीएल का अहम मुकाबला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: समाचारों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, तो चलिए चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोता, अभी हमारे किसी श्रोता का मैसेज हम तक पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि ओल्ड इज गोल्ड। जी हाँ, बिल्कुल श्रोताओं, बहुत ही प्यारे गीत होते हैं ओल्ड, और सुनकर भी मज़ा आता है।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170180170191। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: धरती हमारी माँ है, लेकिन आज वो घायल हो रही है। हर दिन कटते पेड़, सूखती नदियाँ और बढ़ता प्रदूषण हमें चेतावनी दे रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियाँ सांस लेने के लिए भी तरस जाएंगी। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाएं, क्योंकि साफ हवा, मीठा पानी और हरियाली ही असली धन है। पर्यावरण बचाना मतलब जीवन बचाना।
1: बंटी, बंटी,
2: बंटी,
1: बंटी, बंटी, बंटी, क्या हो गया तुम्हें? ये रोज रोज क्या?
3: अब आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो मुझे बहुत डर लगता है।
1: सॉरी बंटी, आपसे पापा हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, प्रॉमिस।
3: गॉड प्रॉमिस,
1: गॉड प्रॉमिस।
4: सीट बेल्ट ना पहनने से नुकसान आपसे ज्यादा आपके अपनों का हो सकता है, तो गाड़ी में बैठते ही खुद से और सबसे पूछें, पहनी क्या?
5: क्या आपके पार्षद ने साल में दो बार वार्ड सभा का आयोजन किया है?
6: वार्ड सभा, आपका वार्ड, आपकी आवाज।
5: नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुना था ताकि वे उनके निर्देशों के अनुसार काम करें, लेकिन अफसोस रुचिका, ये सेवक से मालिक बन बैठे।
6: क्या आपके पार्षद ने पिछले कार्यकाल में नियमित वार्ड सभा की?
5: क्या उन्होंने आपकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुना?
6: क्या उन्होंने चुनाव के समय किए गए वादे पूरे किए?
5: क्या वह एक सेवक की तरह काम करते हैं या एक शासक की तरह?
6: सावधान, अगर वार्ड सभाओं की उपेक्षा की गई है तो समझ लीजिए कि उन सेवकों ने नागरिकों की आवाज और उनकी पसंद को कुचल दिया है।
5: आपका एक वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके वार्ड और धर्मशाला नगर का भविष्य है।
6: अपना अधिकार पहचानो,
5: सही प्रतिनिधि चुनो,
6: सेवक चुने, मालिक नहीं। न भूलेंगे आवाज अपनी, न भूलेंगे अधिकार। आपका वार्ड, आपकी जिम्मेदारी।
7: कहते हैं लड़कियां दिमाग से नहीं दिल से काम लेती हैं। हंसी तो फंसी, और इनकी ना में भी हाँ होती है। हे,
8: मेरी ना का मतलब सिर्फ ना है, जस्ट फ्रेंड्स।
9: ना कहना आसान नहीं पर जरूरी है। HIV AIDS का चांस ना लें। जवान हूँ, नादान नहीं।
10: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
11: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
10: बात तो सही है।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: धरती हमारी माँ है, लेकिन आज वो घायल हो रही है। हर दिन कटते पेड़, सूखती नदियाँ और बढ़ता प्रदूषण हमें चेतावनी दे रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियाँ सांस लेने के लिए भी तरस जाएंगी। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाएं, क्योंकि साफ हवा, मीठा पानी और हरियाली ही असली धन है। पर्यावरण बचाना मतलब जीवन बचाना।
1: बंटी, बंटी,
2: बंटी,
1: बंटी, बंटी, बंटी, क्या हो गया तुम्हें? ये रोज रोज क्या?
3: अब आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो मुझे बहुत डर लगता है।
1: सॉरी बंटी, अब से पापा हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। प्रॉमिस।
3: गॉड प्रॉमिस।
1: गॉड प्रॉमिस।
4: सीट बेल्ट ना पहनने से नुकसान आपसे ज्यादा आपके अपनों का हो सकता है, तो गाड़ी में बैठते ही खुद से और सबसे पूछें, पहनी क्या?
5: क्या आपके पार्षद ने साल में दो बार वार्ड सभा का आयोजन किया है?
6: वार्ड सभा, आपका वार्ड, आपकी आवाज।
5: नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुना था ताकि वे उनके निर्देशों के अनुसार काम करें, लेकिन अफसोस रुचिका, ये सेवक से मालिक बन बैठे।
6: क्या आपके पार्षद ने पिछले कार्यकाल में नियमित वार्ड सभा की?
5: क्या उन्होंने आपकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुना?
6: क्या उन्होंने चुनाव के समय किए गए वादे पूरे किए?
5: क्या वह एक सेवक की तरह काम करते हैं या एक शासक की तरह?
6: सावधान, अगर वार्ड सभाओं की उपेक्षा की गई है तो समझ लीजिए कि उन सेवकों ने नागरिकों की आवाज और उनकी पसंद को कुचल दिया है।
5: आपका एक वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके वार्ड और धर्मशाला नगर का भविष्य है।
6: अपना अधिकार पहचानो,
5: सही प्रतिनिधि चुनो,
6: सेवक चुने, मालिक नहीं। न भूलेंगे आवाज अपनी, न भूलेंगे अधिकार। आपका वार्ड, आपकी जिम्मेदारी।
7: कहते हैं लड़कियां दिमाग से नहीं दिल से काम लेती हैं। हंसी तो फंसी, और इनकी ना में भी हाँ होती है। हे,
8: मेरी ना का मतलब सिर्फ ना है, जस्ट फ्रेंड्स।
9: ना कहना आसान नहीं पर जरूरी है। HIV एड्स का चांस ना लें।
8: जवान हूँ, नादान नहीं।
10: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
11: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
10: बात तो सही है।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।
1: कैसे जीते हैं भला?

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170180170191। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: धरती हमारी माँ है, लेकिन आज वो घायल हो रही है। हर दिन कटते पेड़, सूखती नदियाँ और बढ़ता प्रदूषण हमें चेतावनी दे रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियाँ सांस लेने के लिए भी तरस जाएंगी। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाएं, क्योंकि साफ हवा, मीठा पानी और हरियाली ही असली धन है। पर्यावरण बचाना मतलब जीवन बचाना।
1: बंटी, बंटी,
2: बंटी,
1: बंटी, बंटी, बंटी, क्या हो गया तुम्हें? ये रोज रोज क्या?
3: अब आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो मुझे बहुत डर लगता है।
1: सॉरी बंटी, अब से पापा हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। प्रॉमिस।
3: गॉड प्रॉमिस।
1: गॉड प्रॉमिस।
4: सीट बेल्ट ना पहनने से नुकसान आपसे ज्यादा आपके अपनों का हो सकता है, तो गाड़ी में बैठते ही खुद से और सबसे पूछें, पहनी क्या?
5: क्या आपके पार्षद ने साल में दो बार वार्ड सभा का आयोजन किया है?
6: वार्ड सभा, आपका वार्ड, आपकी आवाज।
5: नागरिकों ने अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुना था ताकि वे उनके निर्देशों के अनुसार काम करें, लेकिन अफसोस रुचिका, ये सेवक से मालिक बन बैठे।
6: क्या आपके पार्षद ने पिछले कार्यकाल में नियमित वार्ड सभा की?
5: क्या उन्होंने आपकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुना?
6: क्या उन्होंने चुनाव के समय किए गए वादे पूरे किए?
5: क्या वह एक सेवक की तरह काम करते हैं या एक शासक की तरह?
6: सावधान, अगर वार्ड सभाओं की उपेक्षा की गई है तो समझ लीजिए कि उन सेवकों ने नागरिकों की आवाज और उनकी पसंद को कुचल दिया है।
5: आपका एक वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके वार्ड और धर्मशाला नगर का भविष्य है।
6: अपना अधिकार पहचानो,
5: सही प्रतिनिधि चुनो,
6: सेवक चुने, मालिक नहीं। न भूलेंगे आवाज अपनी, न भूलेंगे अधिकार। आपका वार्ड, आपकी जिम्मेदारी।
7: कहते हैं लड़कियां दिमाग से नहीं दिल से काम लेती हैं। हंसी तो फंसी, और इनकी ना में भी हाँ होती है। हे,
8: मेरी ना का मतलब सिर्फ ना है, जस्ट फ्रेंड्स।
9: ना कहना आसान नहीं पर जरूरी है। HIV एड्स का चांस ना लें।
8: जवान हूँ, नादान नहीं।
10: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
11: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
10: बात तो सही है।

रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।